नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 25 मई 2026 सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:16 पर।

उजाले से भरपूर होकर इस आत्मा इस मन को रोशन करके जीवन सफर को तय करना जरूरी है। इसी से धरती का रूप निखरेगा, ये धरती जन्नत बनेगी, इसी में ही सारी मानव जाति का कल्याण।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो की दस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

0: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक बातचीत सुनिए डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ। आपकी बातचीत का विषय है आयुर्वेद और उपचार।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, एक सफल आयुर्वेदाचार्य जो अंबाला से है। यह कहना सही रहेगा कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल से भी पहले का है। यह हम सबके स्वास्थ्य के साथ कैसे जुड़ा है समझते हैं आज सरल शब्दों में। अंबाला के जाने माने आयुर्वेदाचार्य, पंचकर्मा के जानकार डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी से स्वागत आपका डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।
3: धन्यवाद। रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिल्पी शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी तरह के पेशेंट्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। अंबाला में मेरा क्लिनिक है। मेरा मेन पर्पस है लोगों को आयुर्वेदा के लिए अवेयर करना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो रोहतक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मुझे बचपन से ही आयुर्वेद के प्रति रुझान था। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैं अपने पेशेंट से जुड़ी और मैं आयुर्वेदा को और आगे लेके गई और यही मेरा लाइफ का पर्पस है, आयुर्वेदा के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना।
2: सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है स्वास्थ्य के संदर्भ में, और आयुर्वेदा चिकित्सा अलग कैसे है।
3: आयुर्वेद बेसिकली 5000 साल पुरानी पद्धति है, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स अ लाइफस्टाइल। आयुर्वेद जो है वो उसका पर्पस है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विच मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करना। तो आयुर्वेद ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम करता है रादर देन ट्रीटिंग अ पेशेंट। इसीलिए आयुर्वेद जो है एक दिनचर्या है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट का इलाज करना है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप पहले ही अपने आप को बचा लो ताकि आप पेशेंट बनो ही ना। तो वो मेनली उसका फोकस रहता है कि आपके दिनचर्या कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, जिसकी वजह से आप बीमार ही ना हो। आयुर्वेद जो है वो हर पर्सन के लिए अलग है, इट्स अ साइंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन पे जो मेडिसिन काम करती है वो दूसरों पे काम नहीं करती। तो आयुर्वेद जो है सब पे एक समान नहीं है
2: जी।
3: क्योंकि आयुर्वेद जो बेस्ड है वो वात पित्त कफ पे है। आयुर्वेद ये मानता है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश भूमि पृथ्वी वायु और जल। तो ये जब 5 महाभूत आपस में मिलते हैं तो 3 तरह की एनर्जी बनाते हैं जिसको वात पित्त और कफ कहा गया है
2: जी।
3: तो ये तीनों ही एलिमेंट हम सब में बर्थ के टाइम रहते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो हैं इन तीनों ही एलिमेंट में से एक ऐसा दोष होता है जो कि डोमिनेट हो जाता है, बाकी 2 रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं। तो वही आपकी प्रकृति बना देते हैं, उसी से आपकी फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेट बन जाती है, आप उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो हर पर्सन की प्रकृति अलग है, हर किसी की अलग बॉडी टाइप है, और जब ये तीनों दोष जब बैलेंस में रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम जो है वो डिजीज हो जाती है। वो डिपेंड करती है कि कौन सा दोष इम्बैलेंस हुआ है, उसके हिसाब से हमारी डिजीज बन जाती है।
2: जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम आज सरल शब्दों में आयुर्वेदा को समझने की कोशिश करेंगे, आपने ये कहा कि ये हमारी एक जीवन शैली का एक तरीका है, क्या मैंने सही समझा?
3: बिल्कुल सही समझा आपने। बिकॉज आयुर्वेद में एक दिनचर्या डिसाइड की गई है कि अगर हम उस दिनचर्या को फॉलो करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे
2: जी।
3: उसमें उन्होंने बताया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना
2: जी।
3: ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा कि आपकी जो वात दोष है वो शांत रहेगा, आपका जो सुबह अगर जैसे जो लोग लेट उठते हैं उनका कफ दोष बढ़ जाता है जिस कारण वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उस टाइम मेडिटेशन करने से, उस टाइम सैर करने से, पढ़ाई करने से, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है सुबह, वो वात का समय है, सुबह 2 से लेकर 6 बजे का समय वात का है। देखिए आयुर्वेद ने कितनी खूबसूरती से पूरे दिन को भी समय में बांट दिया है कि कौन कौन सा दोष किस टाइम पे डोमिनेंट होगा और आपको उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है। सुबह 2 से 6 का टाइम वात का है, तो आपने उस टाइम मेडिटेशन करनी है, स्टडी करनी है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, क्योंकि वो टाइम जो है वो वाइब्रेंट टाइम है, उस टाइम आप शांत रहते हैं। उसके बाद सुबह उठने के बाद 6 से 10 का टाइम कफ का टाइम है, तो उस टाइम पे अगर आप लेट उठेंगे तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमसे सुबह उठा नहीं जाता तो कैसे उठें। तो मैंने उन्हें कहा आप चाहे 5:45 पे उठ जाओ, 6 बजे के बाद नहीं उठना, उससे पहले उठना है, आप डेफिनेटली सुबह उठ जाओगे। तो उस टाइम एक तो उठने में दिक्कत होती है क्योंकि कफ बढ़ जाता है, तमस का टाइम हो जाता है वो, तो उस टाइम उठने से आपको क्या होगा कि आप बेटर फील करेंगे, एनर्जेटिक टाइम है वो, क्योंकि कफ का टाइम है, एंड्यूरेंस काफी अच्छी होती है, तो इस टाइम पे हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज का टाइम है ये, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10, तो ये दोनों ही टाइम कफ के हैं। उसके बाद जो तीसरा 10 बजे के बाद का जो टाइम है, 10 से 2 का टाइम, वो पित्त का टाइम है, यानी उस टाइम आपने डाइजेशन का टाइम है जो कि मेन मील का टाइम है। आयुर्वेद मेन मील 10 से 2 के बीच में रिकमेंड करता है, तो उस टाइम अगर आप खाते हैं वो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। पित्त आपको एम्बिशियस बनाती है, तो आपकी जो उस टाइम पे आप जो भी आपके डिफिकल्ट टास्क हैं वो आप उस टाइम पे करिए। तो इस तरह से सुबह उठ के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, देन उसके बाद आपको मसाज करना, नस्य करना, जिसमें नेजल ड्रॉप्स डालते हैं ताकि आपके जो गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग हैं उनके रोग ना हो, उसके लिए नस्य किया जाता है। देखिए अगर आप नस्य रेगुलर कर रहे हैं बचपन से ही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपकी आईसाइट बढ़िया रहेगी, आपको थ्रोट से रिलेटेड इशू नहीं होंगे, तो बताइए बीमारी कहां से आएगी अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद फिर दातुन करना, दातुन के लिए भी आयुर्वेद कहता है कि आप नीम और जामुन की दातुन करिए, और उसके बाद फिर बॉडी मसाज के लिए कहता है जिसको अभ्यंग कहते हैं या स्नेहन कहते हैं आयुर्वेद में, उससे क्या होता है आपका वात दोष जो है वो बैलेंस रहता है। उसके बाद फिर आपको स्नान करने के बाद नहाने की सलाह देता है, फिर आपको भोजन करना है, उसके बाद आपको अपना काम करना है। मेन भोजन वो दोपहर के भोजन को आयुर्वेद में मेन माना गया है, मेन मील ऑफ द डे जो है वो लंच टाइम है आपका, तो उस टाइम आपको गरिष्ठ आहार करना है। ब्रेकफास्ट आयुर्वेद कहता है कि आप उस टाइम या तो फल फ्रूट का सेवन करिए या बिल्कुल हल्का आहार रखिए। मेन आहार आपका जो है वो दोपहर का टाइम है क्योंकि वो पित्त का समय है। उसके बाद फिर आपको रात को भी अर्ली डिनर करने की सलाह देता है कि सूर्यास्त से पहले आपने डिनर कर लेना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो आप सोने के टाइम में और जो आपका डिनर का टाइम है उसमें 2-3 घंटे का फर्क हो जाता है, उसके कारण आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है सोने से पहले। और अर्ली सोने के लिए भी वो 10 बजे तक का टाइम कहता है क्योंकि 10 से आगे 2 बजे तक पित्त का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 10 बजे के बाद सोते हैं या 11 बजे के बाद सोते हैं तो आप सो ही नहीं पाएंगे, आपके जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहेगी 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तक पित्त का टाइम है। आपने देखा होगा आजकल बच्चे भी 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है माइंड, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आपको नींद आएगी कि नहीं, आप डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर आप 10 बजे सो गए हैं तो वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल डीप स्लीप आएगी, और 10 से 6 बजे तक का आपका टाइम आयुर्वेद बताता है सोने के लिए, और 6 बजे से जस्ट थोड़ा पहले या 5 बजे अगर आप उठ सकते हैं तो वो बेस्ट टाइम है।
2: डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी इसमें कई सारी चीजें हैं जो शायद हम आज के दौर में देख नहीं पाते हैं, खास करके आज के युवा, उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। जब हमारे समय में सोने का टाइम होता था तब वो जाग रहे होते हैं, और जब हम सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठ जाते हैं तब वो सोए होते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो किस तरीके से आज की जो नई पीढ़ी है उसको आयुर्वेदा के इन तरीकों से हम समावेश करें?
3: हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं। जब कोविड का टाइम था उस टाइम लोगों को पीसीओडी बहुत ज्यादा हो गई थी, यंग जनरेशन को, मतलब हर 9 में से 1 बच्चे को पीसीओडी थी।
2: अच्छा।
3: तो उस टाइम क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने जैसे पेशेंट से पूछा कि आपका सोने उठने का टाइम क्या है, देन उन्होंने कहा कि जब हमारा काम का टाइम होता है हम जस्ट 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, तो रात को भी लेट तक वो काम करते रहते हैं। उससे और कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी ने दिखा दिया कि उनके जो दोषास हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि रात को लेट सोने से वात दोष बढ़ जाता है बॉडी में, और जब हम सुबह लेट उठते हैं तो कफ दोष बढ़ जाता है, और दोनों ही दोष इम्बैलेंस होने की वजह से उन्हें पीसीओडी की दिक्कत हो गई।
2: पहले समय में अगर हम देखें, कुछ साल पहले अगर हम जाएं, तो शायद बीमारियां भी कम होती थी, क्योंकि जो तरीका रहन सहन का वो आयुर्वेदक के अनुसार ही होता था।
3: बिल्कुल सही।
2: अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य के मायने आपने बता दिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा होलिस्टिक सिस्टम कहा जाता है, ये पेशेंट को कैसे प्रभावित करता है?
3: जी, आयुर्वेद में बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दो तरह के सिस्टम है।
2: जी।
3: एक को हम शोधन कहते हैं और एक को शमन कहते हैं। शोधन का मतलब है बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करना, बॉडी के जितना भी अंदर टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से रिलीज करना, जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं।
2: जी।
3: तो उसके लिए आयुर्वेद पंचकर्मा थेरेपी अपनाता है। पंचकर्मा थेरेपी, पांच तरह के एक्शंस होते हैं इसमें, पांच तरह के कर्म है जिस कारण इसको पंचकर्म कहा गया है, जिसके थ्रू हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और इसमें जो पांच कर्म है उसमें वमन, विरेचन, वमन मीन्स वॉमिटिंग, विरेचन मीन्स पर्गेशन, बस्ती यानी एनीमा, एंड देन रक्त मोक्षण जिसमें ब्लड लेटिंग करते हैं, एंड देन नस्य जिसे कि नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इन प्रोसेस में क्या होता है कि इससे पहले एक पूर्व कर्म होता है। पूर्व कर्म में आपको स्नेहन और स्वेदन किया जाता है, यानी कि आपको बॉडी को मसाज दी जाती है, स्टीम दी जाती है, ताकि जो चैनल्स हैं उनको ओपन किया जा सके, सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके, ताकि जो सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन्स पड़े हैं वो रिलीज हो सके। उसके बाद वमन और विरेचन के लिए घी पिलाया जाता है पेशेंट को।
2: अच्छा।
3: वो तब तक पिलाया जाता है तब तक जब तक कि पेशेंट के सारे टॉक्सिन्स उसके स्टमक में ना आ जाए। लाइक उसको जब घी पिलाते हैं तो 3 दिन 5 दिन या 7 दिन में पर्सन के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी विकृति के अनुसार उसका डिसाइड होता है कि वो कितने दिन तक उसको घी पिलाया जाएगा। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब पेशेंट रेडी है मेन प्रोसेस के लिए, तब हम उसको फिर नियरेस्ट रूट से निकालते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की कफ बढ़ी हुई है तो हम उसे वमन के थ्रू बाहर निकालेंगे, और अगर उसकी पित्त बढ़ी हुई है तो उसे विरेचन के थ्रू बाहर निकालेंगे, यानी मोशंस के थ्रू निकालेंगे। और अगर पेशेंट की वात बढ़ी हुई है तो हम उसको एनिमास देते हैं, बस्ती के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। रक्त मोक्षण में बेसिकली जितनी भी स्किन डिजीज आती हैं उस केस में हम ब्लड लेटिंग करते हैं, जो कि जलोका के थ्रू यानी लीचेस के थ्रू होता है, या फिर हम डायरेक्टली वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। और लास्ट में है नस्य। नस्य में हम नेजल ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि नासा को सिर का द्वार कहा गया है आयुर्वेद में। तो अगर हम नाक से मेडिसिन डालते हैं तो उससे आपके जितने भी सेंस ऑर्गेन्स हैं वो सारे लुब्रिकेट हो जाते हैं, आपके जो ब्रेन में प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी लोब है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी अपर जो पार्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती।
2: आपने जो ये प्रोसेस बता दिए, क्या ये किसी एक्सपर्ट के देखरेख में करने चाहिए या हम घर पे भी कर सकते हैं?
3: आप इसमें से सिर्फ नस्य है जो आप घर पे कर सकते हैं, बाकी सब आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करने पड़ेंगे, उनकी गाइडेंस में करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डोजेज और हर चीज वो है, वो आप नहीं उसको अंदाजा लगा सकते कि कितना घी पीना है और कौन सी मेडिसिन से आपको पिलाई जाएगी तो आप वॉमिट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड करता है, खासकर अगर वो पंचकर्म जानता है तो।
2: तो श्रोताओं को हम ये बता देते हैं कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो उसके बारे में अगर वो कोई भी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वो जरूर अपने आयुर्वेदाचार्य उनसे वो बात करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी वात, पित्त और कफ के बारे में बताया, समादोषा जो है ये क्या शब्द है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
3: आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है आपके माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में रहना।
2: जी।
3: और आपके जो दोषास हैं वात, पित्त, कफ, इनका सम रूप में रहना, मतलब कि इनका बैलेंस्ड फॉर्म में रहना। जब ये दोष बैलेंस्ड है तो आप स्वस्थ हैं, जब ये इम्बैलेंस है तो आपको डिजीज है। और कौन सा दोषा इम्बैलेंस है वो ही आपकी डिजीज को डिफाइन करता है, कि अगर आपका वात दोष इम्बैलेंस है तो आपको अलग तरह की डिजीज है, आपका पित्त इम्बैलेंस है तो डिजीज अलग होगी। तो ये तीनों ही दोष जब इम्बैलेंस होते हैं तो डिफरेंट तरह की डिजीज पैदा करते हैं, और हम उसको नाड़ी परीक्षा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि आपकी कौन सी विकृति है, प्रश्न पूछ के पता करते हैं पेशेंट से कि उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है कि अगर ज्यादा दोष अगर आपका डिस्टर्ब नहीं है तो हम शमन थेरेपी के थ्रू यानी कि आपको मेडिसिन देके ही उसको ठीक कर देते हैं, और थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल बताएंगे कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, उससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब डिजीज काफी ज्यादा होती है, क्रॉनिक होती है, तो उस केस में हम डिटॉक्स की सलाह देते हैं, और डिटॉक्स भी हम हर महीने में नहीं कर सकते, डिटॉक्स के कुछ पर्टिकुलर टाइम है, जो ऋतु संधि का टाइम है उसको आयुर्वेद जो है वो डिटॉक्स के लिए बेस्ट मानता है, क्योंकि उस टाइम आपके दोष ऑलरेडी बड़े होते हैं तो उनको निकालना और इजी हो जाता है। तो उस टाइम में हम पेशेंट को डिटॉक्स देते हैं, तो उससे उसके जो सेलुलर लेवल पे जब वो डिटॉक्स हो जाता है उसके बाद जब हम उसको मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट पेशेंट पे ज्यादा रहता
2: है। आपने अभी पंचकर्मा की बात की है, आप पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं, कृपया आप बताएं इसमें हम स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से प्रक्रियाएं पंचकर्मा में है।
3: जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पंचकर्मा पांच तरह के कर्मों से जो है उसको डिफाइन करता है, जिसमें मैंने बताया वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। तो इसमें से जो वमन और विरेचन है, ये वमन को हम तब करते हैं जब हमारा कफ बड़ा हो, पित्त बढ़ने की टाइम पे हम विरेचन करते हैं, और अगर वात बड़ी हुई है तो हम बस्ती करते हैं, और अगर आपको स्किन डिजीज है या पित्त इम्बैलेंस है उस केस में हम रक्त मोक्षण भी करते हैं, और नस्य हम अपने जो साइनसिस से रिलेटेड इशू है या आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, आईसाइट के इशू है या थ्रोट से रिलेटेड है, थायराइड के इशू है, तो उस केस में हम जो है नस्य करते हैं, या खासकर फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी नस्य का बहुत अच्छा रोल है। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट ठीक किए हैं जो कि हम लोकल एरिया पे तो काम करते हैं, उसके साथ जब हम नस्य को इंक्लूड कर देते हैं तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। वन ऑफ माय पेशेंट, उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल मूव ही नहीं करती थी।
2: अच्छा।
3: और आफ्टर 15 दिन उसने जो थेरेपी ली नस्य की, उसके बाद अब 60-70% इंप्रूवमेंट है उसकी, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में, मतलब अच्छे रिजल्ट हैं आयुर्वेद के।
2: जी, जैसे आपने अभी फ्रोजन शोल्डर की बात की, तो क्या कोई एक सरल सा टिप आप बता सकते हैं एक फ्रोजन शोल्डर को हम कैसे रिलीज करें या कैसे उसके दर्द से मुक्त हो सकें?
3: मोस्टली फ्रोजन शोल्डर उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनको डायबिटीज या उनके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो।
2: अच्छा।
3: उन केसेस में ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, या जो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो उन बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करते हैं।
2: जी।
3: तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि उस जगह पे स्नेहन किया जाए गरम तेल लेके, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है जहां भी चीज फ्रीज हुई है या जहां पेन है वहां पे वात दोष बढ़ा हुआ है। वात की नेचर ड्राई और कोल्ड होती है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी आपने किसी चीज को ट्रीट करना है तो उसके ऑपोजिट गुणों पे काम करना पड़ेगा। तो आपको ऑयल यूज करना है जो कि लुब्रिकेटेड होता है, और उसको हॉट करके यूज करना है ताकि उसमें हॉट और लुब्रिकेशन वाली दोनों क्वालिटीज आ जाए। तो उसको आप जब अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने के बाद आपने वहां पे स्टीम देनी है, या फिर आप वहां पे कुछ गर्म पानी की बॉटल रख सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड देन आपने एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करिए, उसको मूव करिए, उसकी मूवमेंट्स करिए, ताकि उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और जिन पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वहां तक ब्लड पहुंच जाए और वो पार्ट हील हो सके।
2: डॉक्टर साहब, ये बातचीत हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई भी गाना हम आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। कौन सा गाना आप सबसे पहले सुनना चाहेंगे?
3: मैं किशोर कुमार का सॉन्ग है रुक जाना नहीं रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, ये प्लीज आप सुनाएं।
4: रुक

0: डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के एलोपैथिक ट्रीटमेंट दौर में आम जन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्यों चुने, कौन कौन से प्रोसेस या तरीके हैं स्वस्थ जीवन के लिए, क्या फर्क है इनमें?
1: एक्चुअली आयुर्वेद और एलोपैथिक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो थेरेपीज हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बेटर है या एलोपैथी बेटर है। जहां पे इमरजेंसी की बात आती है वहां पे एलोपैथी कारगर सिद्ध होती है
0: जी।
1: और जहां पे क्रॉनिक डिजीज की बात आती है वहां पे आयुर्वेद जो है वो काफी हद तक सफल रहा है
0: जी।
1: आयुर्वेद में डिफरेंस ये है कि आयुर्वेद जो है पर्सन के ऊपर काम करता है, डिजीज के ऊपर काम नहीं करता
0: जी।
1: तो एक पर्सन की क्या प्रकृति है, उसकी बॉडी टाइप क्या है और उसका कौन सा दोष बड़ा हुआ है, उसकी विकृति क्या है, मतलब उसको डिजीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या मेडिसिन देनी है या उसको हमने डिटॉक्स करना है। एक्चुअली आयुर्वेद सब लोगों के लिए डिफरेंट है, तो जो डिजीज है वो उस पर्सन की प्रकृति क्या है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आयुर्वेद में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पांच महाभूत की जो है वो बेस है इसका, जिसकी वजह से वात पित्त और कफ तीन तरह के एनर्जीज बनती है
0: जी।
1: वात दोष जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। आयुर्वेद में सात तरह की प्रकृति बताई गई है, वात पित्त कफ, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ, ये सात तरह की प्रकृति हैं। इसमें बेसिकली जैसे हम बात करें कि जो वात प्रकृति है वो लोग हैं जो कि बहुत खाने के बाद भी मोटे नहीं होते, अगर बढ़ेगा भी तो उनके टमी एरिया पे फैट बढ़ता है। और ये लोग हर चीज बहुत फास्ट करते हैं, दे टॉक फास्ट, वॉक फास्ट, ईट फास्ट, लर्न फास्ट एंड फॉरगेट फास्ट। और पित्त प्रकृति जो लोग हैं उनके साथ क्या रहता है कि वो मॉडरेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं वो लोग, गुस्सा कुछ ज्यादा रहता है उन लोगों में, डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी हजम कर सकते हैं, बड़ा मील लेते हैं और उनको इजी डाइजेस्ट हो जाता है और अपनी मर्जी से वो वेट कम और ज्यादा कर सकते हैं। जो कफ प्रकृति लोग हैं वो बेसिकली बॉडी बिल्डर होते हैं, अच्छे बिल्ट होती है और उनको हवा पानी भी लग जाता है, मतलब उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, उनका वेट नेचुरली बढ़ जाता है। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि वेट कैसे रिड्यूस करें
0: जी।
1: तो इस तरह से तीनों प्रकृति जब कॉम्बिनेशन में होती है तो उनके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे उनके मेंटल और फिजिकल बॉडी में। तो आयुर्वेद ये डिसाइड करता है कि इस पेशेंट की ये प्रकृति है और इसका ये दोष इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देना है। उसी तरह से उनका लाइफस्टाइल होगा, उसी तरह से उनकी डाइट होगी। जैसे वात प्रकृति है तो वो फास्ट खाता है और उसको हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है तो उसको दोबारा खाना पड़ता है और उसमें एंड्यूरेंस भी कम होती है तो इसलिए उसको बीच में रेस्ट भी लेना पड़ता है। वहीं जब हम कफ की बात करते हैं तो उसको हम दोपहर को सोने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी एंड्यूरेंस ज्यादा है तो उसका कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम उसे थोड़ा मील लेने की सलाह देते हैं। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति पर्सन है उसकी डाइजेशन अच्छी होती है इसलिए वो ओवर ईटिंग कर लेता है तो उसको हम कॉन्शियसली ईट करने के लिए कहते हैं कि ताकि वो ओवर ईट ना करे, जिसके कारण उसकी पित्त और एग्रीवेट हो जाती है। तो इस तरह से हम डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हर पर्सन के हिसाब से उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ये मानता है कि हमारी माइंड बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में होना जरूरी है, इसलिए आयुर्वेद जो है वो अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल और स्लीप इसके चारों ओर ही घूमता है कि आपकी डाइट कैसी हो आपकी प्रकृति के हिसाब से। आप ये देखिए कितना अच्छा होगा अगर आपको पता है आपकी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से अगर आप डिसाइड करें कि मेरी डाइट और लाइफस्टाइल क्या होगा तो आप बीमारी से भी दूर रहेंगे और आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि सिर्फ बॉडी तब अच्छे से काम करती है जब आपका माइंड स्वस्थ हो, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आयुर्वेद बहुत ज्यादा जो है ध्यान देता है
0: जी।
1: उसके लिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप मेडिटेशन करिए ताकि आपके जो भी 60,000 थॉट जो आप डेली सोच रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए परमात्मा ने नेचुरली नींद बनाई है, जिससे हम अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं तो वो हमारे थॉट्स रिलीज हो जाते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि वो अगले दिन के थॉट्स फिर एड ऑन हो जाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद मेडिटेशन की सलाह देता है। और अगर हम पंचकर्मा थेरेपी की बात करें तो वो शिरोधारा के लिए रिकमेंड करता है, जिसमें कि पहले ऑरा क्लेंस किया जाता है, उसके बाद जो ब्रह्मरंध है हमारे फोरहेड के बीच में वहां पे ऑयल टपकाया जाता है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिक वेव जो है मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। इस तरह से हम जो है स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अगर हम आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेते हैं तो उसके बाद हम अपने दोष को समझने के बाद अगर हम अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं तो शायद वही एक सही रास्ता होगा, हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें और हम आगे की जिंदगी और अच्छे से जी सकें।
1: बिल्कुल, जब हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हम क्या हैं, हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमें कौन सा खाना सूट करेगा और कौन सा लाइफस्टाइल हमें सूट करेगा और क्या हमें नहीं करना है, डाइट और लाइफस्टाइल की चॉइसेस कितनी इजी हो जाती हैं, और हम उस पर स्टिक रहें तो हम लॉन्ग लाइफ भी जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं।
0: डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, अगर आपसे परामर्श लेना हो तो कृपया बताएं, और आपके 20 साल का जो अनुभव है उसमें आपने खासतौर पर किन किन रोगों पर परामर्श दिया है?
1: मेरा बेसिकली अंबाला शहर में निदान हीलिंग आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है, और मैं अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के पेशेंट जो है मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, जिसमें मेनली मैंने थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, ओबेसिटी, इवन जिनका वेट गेन नहीं हो रहा वो पेशेंट्स, इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, बैकएक जिनको रहता है, या स्पाइन से रिलेटेड इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर स्पाइन में दिक्कत है, या किसी को पैरालिसिस है, इस तरह के पेशेंट्स भी मैं हमने ट्रीट किए हैं।
0: तो समय क्या रहता है आपके क्लिनिक का?
1: समय सुबह 9 से 2 और शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक,
0: और रविवार आपका
1: क्लोज रहता है।
0: आपने एंडोमेट्रोसिस की बात की, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है?
1: जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग अगर यूट्रस के बाहर भी मिलने लगे और वो सेम तरह से एक्ट करे जैसे कि वो अंदर रह के एक्ट करती है, जैसे कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये शेड कर जाती है और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो ये लेयर अगर ये अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो यूट्रस के ऊपर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर या फिर अगर यूट्रस के अदर पार्ट्स पे अटैच हो जाए जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के ऊपर या फिर हमारी जो ओवरीज हैं उन पे अटैच हो जाए तो ये भी उसी तरह से ब्लीड करेगी, वैसे ही ग्रो करेगी, बट वहां पे उसके निकलने का कोई स्थान नहीं है। तो क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, उसको ब्लीडिंग बहुत होती है, फेंट हो जाता है पेशेंट कई बार तो पेन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार फ्लो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं वहां पे वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं या एंडोमेट्रियल सिस्ट बोलते हैं इसे। तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाती है आगे और कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी और पेन बहुत ज्यादा रहता है, फटीग रहेगा उसको सारा दिन।
0: इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि ऐसे पोजीशन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्या कहते हैं?
1: उनको जरूर, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हमें जो पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है वो नॉर्मल है, वो सबको होता है तो हमें भी हो रहा है, लेकिन इसको बर्दाश्त करने का कोई भी कारण नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी लेडी डॉक्टर हैं जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उनसे मिलिए, अपने जो भी टेस्ट हैं जैसे कि इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह MRI के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है ये टिश्यू, तो आप वो पता करिए और जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है उससे अपना ट्रीटमेंट कराइए ताकि आपको इसका जड़ से इलाज हो सके और आप जो ये अननेसेसरी पेन बेयर कर रहे हैं इससे आपको निजात मिल सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और ब्रेक का अब समय आया है, तो हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई और गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, और क्योंकि इसके बाद हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे तो उससे पहले ये गाना हम उनको सुनाना चाहते हैं, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का है?
1: आप पिया बसंती रे सॉन्ग जो है वो प्लीज मेरे लिए बजाइए।
0: जी श्रोताओं, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गाना।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था आयुर्वेद और उपचार। डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ बात कर रहे थे भारत सोपोरी।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निया जैन, लेकर आई हूं आपके लिए कहानियों का एक सिलसिला। और आज शुरू कर रही हूं एक कहानी जो सभी माताओं को समर्पित कर रही हूं। और आज की कहानी का शीर्षक है माँ का अनमोल प्यार। एक गांव में वृद्धा रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसके तीन बेटे थे, रवि, मोहन और सौरभ। जब तक बेटे छोटे थे, सुमित्रा ने बड़ी ममता और प्यार से उनकी परवरिश की। वह खुद भी भूखी रहकर उन्हें खिलाती, ठंड में जाकर उनकी देखभाल करती और उनकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। समय बीतता गया, बेटे बड़े हो गए, पढ़ाई करके शहर में नौकरी करने चले गए। वहां उनकी शादियां भी हो गई, वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। सुमित्रा अब बड़ी बूढ़ी और कमजोर हो चली थी। गांव के पुराने घर में वे अकेली रहती और हर रोज अपने बेटों के फोन का इंतजार करती, पर कॉल बहुत कम आते। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने किसी तरह रवि को खबर दी। रवि ने मोहन और सौरभ को बताया, लेकिन अब सब अपनी अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर टाल गए। आखिरकार पड़ोसियों ने ही सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सोच रही थी कि जिन बेटों के लिए उसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, वे आज उसके पास नहीं।

0: और उन्हें माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सुमित्रा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं थी, बस तुम्हारा साथ चाहिए था। तीनों बेटों ने वादा किया कि अब वे अपनी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद से उन्होंने बारी बारी से माँ के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी सेवा की और उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा। सुमित्रा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, क्योंकि अब उसे सिर्फ बेटों का ही नहीं, उनके प्यार और स्नेह का भी साथ मिल गया। कहानी से सीख ये मिलती है, माता पिता ने हमारी परवरिश में अपना सब कुछ नुचावर किया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने, उनका सम्मान करें और उन्हें कभी अकेला महसूस ना होने दें। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी, हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010 पर। और साथ ही अगर आपके पास कोई भी मौलिक कहानी है तो मुझे भेज सकते हैं इसी नंबर पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: नमस्कार, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। फिर से स्वागत करता हूं आज आपका लघु कथाओं के इस श्रृंखला के बीच में, और हमारी आज की प्रस्तुति है वृद्धाश्रम, और इस प्रस्तुति के रचनाकार हैं सीहोर मध्य प्रदेश के श्री धर्मराज देशराज। तो आइए अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा से सुनिए हमारी आज की प्रस्तुति वृद्ध आश्रम। बाबू राम भरोसे वृद्धाश्रम में अपने पलंग पर लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे से आते हुए एक युवक को देखकर बोले, अहो भाग्य, मेरे बेटे श्रवण कुमार जी आए हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। वो युवक बैठने के बाद बोला, पापा जी मेरा नाम भी भूल गए, अरे मैं आपका राजू हूँ। राम भरोसे बोले, हाँ हाँ बेटे, सचमुच भूल गया था, जैसे तुम लोग मुझे भूल गए हो ना। आज 3 साल बाद मुझे देखने आए हो कि जिंदा हूँ या मर गया। मैंने तुमको इतना लायक तो बना ही दिया कि तुमने मुझे नालायक समझ लिया। राजू बोला, पापा आपको कैसे भूल सकता हूँ, दरअसल बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इनमें ही इतना उलझा रहता हूँ कि आ ही नहीं पाया। हाँ अब आपको लेने आया हूँ। राम भरोसे बोले, क्यों भाई, मेरे बिना कौन सा काम रुका हुआ है। 3 साल पहले तुमने कितनी तरकीब से मुझे यहाँ छोड़ा था। तुम तो कहते थे रोज मिलने आया करूंगा, ख्याल रखूंगा, लेकिन शक्ल भी नहीं दिखाई। इतने दिन मुझे अब यही अच्छा लगने लगा है, अब कहीं नहीं जाऊंगा। राजू बोला, ठीक है पापा, 1-2 दिनों के लिए ही चलो। अपने घर, अपने पास अपना खेत है, वहां 2 दिन से शहर का नामी बिल्डर बाबू खान आया हुआ है। पूछने पर जवाब नहीं देता, कहता है तेरा बाप आएगा, उसको ही जवाब देंगे। लगता है वो उस स्थान पर कब्जा करना चाहता है। राम भरोसे बोले, बेटा जी रिटायर होने से पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे, बहुत मुसीबत से तुमको पाला पढ़ाया, काम धंधे से लगाया, तुम्हारी शादी की, फिर रिटायर होने के बाद ये मकान जिसमें तुम रहते हो ना, वो और खेत, वो दोनों खरीदे थे, लेकिन तुमने धोखे से मुझे ही घर से निकाल दिया। अब मैंने खेत और मकान दोनों उस बिल्डर को बेच दिए हैं, और वो समस्त रुपए यहां आश्रम को दे दिए। अब बिल्डर बाबू खान बहुत जल्द तुम्हें वहां से बेदखल कर देगा। अब तुम किराए के मकान में रहो और अपने दम पर संपत्ति बनाओ, खूब ऐश करो। अब जाओ यहां से, वरना यहां के व्यवस्थापक गुस्सा होंगे। राजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। बाबू राम भरोसे उठ खड़े हुए और बोले, जाओ भाई जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम भूल गए थे, तुम्हारे बाप ने भी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ उठाई, और अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाओ। राजू ने सिर झुकाया और चला। तब राम भरोसे बोले, हाँ बेटे, एक बात और सुनकर जाओ। इस वृद्धाश्रम में हर तरह की सुविधाएं हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल दे, तुम भी यहीं आ जाना। मैंने बहुत सा अनुदान दिया है यहाँ। जाओ, अब मेरे पास नहीं आना, क्योंकि हमारे संबंधों में भावनाएं नहीं बची हैं, केवल व्यवस्थाएं ही बची हैं। तुमने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हें एक दिन यहीं लाकर छोड़ देगा। बातें तो तुमने बहुत कही थी कि पापा, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, लेकिन करना तो क्या था, तुमने मेरे लिए इतना किया कि अपनी हर बात से मुकर गए, अपने वायदे से मुकर गए, अपनी हर बात को तुमने बदल दिया, अपने शब्दों को बदल दिया, मुझे बसाने की बजाय यहाँ वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, याद रखना, वक्त सब पर आता है और वक्त सबका आता है। एक दिन तुम भी अपने बच्चों को यही कहोगे।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनेन पसंदीद बात।
3: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारे जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
4: नमस्कार, आज का जो ललवाक है वो माता ललेश्वरी शिव योगिनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक है। ये ललवाक पहले मैं आपको कश्मीरी में सुनाता हूँ। मकरिस मलजन सोलु मनस, मकरिस मलजन सोलु मनस अदलबम जनिस जान, सुयलि जूठुम निष्पानस सोरई सुतई बुनो के। यानी हमारा मन हमेशा शुद्ध नहीं होता, और ये शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इच्छाएं, इसमें आकांक्षाएं, इसमें अपेक्षाएं, इसमें वासनाएं भरी पड़ी होती हैं, और इनके कारण से हमेशा मेरा मन अशांत रहता है, और ये अशांत विचार इस मन को ढक के रख देते हैं। यही मल कहलाता है, और यही मल हमारे असली स्वरूप को हमसे छिपा के रखता है। जैसे जैसे हम मन का थोड़ा सा भी मल दुलाना शुरू कर देते हैं, यानी उस अवेयरनेस के प्रति हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, तो भीतर से आत्मा का जो प्रकाश है वो झलकने लगता है, और निरंतर साधना और ईश्वर की कृपा से ये शुद्धि बढ़ती जाती है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार, ये निरंतर प्रयास करते रहना है, और धीरे धीरे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है, और जैसे जैसे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है वो जो अहंकार है, जो मैं है, वो मैं मिटना शुरू हो जाता है। तब हमें अनुभव होता है कि जो मैं वाला मैं हूं वो कुछ भी नहीं, और जो वो वाला मैं है अहम, वो जो शिव का अहम है, वही सब कुछ है। यही शिव को जानने की एक प्रक्रिया है। आइए मैं नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरस्वती के मुखमंडल से इस वरवाह को हमारे सामने प्रस्तुत करें।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

को मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसी कजा का दामन थाम लेते हो।

बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता, जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती, मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते। अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बेइंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: You're enjoying 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है। चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: वहाँ दुनिया में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो, वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती, उससे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं, तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं था, तब सही का भाव तूने समझाया। जब पल्लू तेरा छोड़ बाहर निकला, तो तेरा दिया ज्ञान समझ में आया। जब देखी पत्थर सी दुनिया, तब तेरे आंचल में समाया संसार समझ में आया। जब लोगों ने जोड़े मतलब से नाते, तब तेरी डांट के पीछे का प्यार नजर आया। जब छोड़ा तूने इस संसार में अकेला, तब माँ तेरे नाम का मतलब समझ में आया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2। पेश किया आरजे सेजल और भारत सोपोरी ने। रिकॉर्ड एडिट व कविता मौलिक आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Pentru mi-a legul, măzuri, mi-a măzuri. Mi-a mai mi-a legul. Ascultă, mi-a ascultă să am cor, așa bătau, așa că trecea cu drumul.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का
2: सुनन खातर हरियाणवी सॉन्ग करो रेडियो विदस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर ललित शर्मा से की गई बातचीत। विषय है अल्सर, कारण और उपचार।
4: डॉक्टर साहब, होम्योपैथी हमने एक नाम सुना है, ये क्या है?
5: सर, होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है कि जो 100% जो है वो लॉ ऑफ नेचर से जो है वो कोरिलेट करता है।
4: जी,
5: तो इसमें क्या है कि पूरी वर्ल्ड ओवर ये फेमस है और मोस्ट प्रेवलेंट है, और इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो 100% पॉजिटिव हैं। ये जैसे कि बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं उसमें अभी लेटेस्ट कई रिसर्चेस आ रही है कि किसी न किसी के साइड इफेक्ट्स हैं, और होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसके पीछे ये राज है होम्योपैथी के पीछे कि क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं है, कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं, मेडिसिन के डेरिवेटिव्स हैं जिससे ओरिजिन हम मेडिसिन करते हैं, तो उसके जो उसकी हम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सब्सटेंस की जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिजर्व करते हैं, और उसकी पोटेंशियल जो पोटेंसी जो होती हैं उन्हीं को प्रिजर्व करते हैं। जो इनिशियल क्रूड फॉर्म होती है जो सब्सटेंस की वो उसमें बिल्कुल नहीं रहती, और उस जो साइड इफेक्ट्स जितने भी पैदा होते हैं किसी भी दवाई के वो क्रूड फॉर्म से ही होते हैं।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, आम भाषा में हम अपने सुनने वालों को समझाना चाहेंगे।
5: हाँ जी।
4: कि ये जो दवाइयाँ हैं,
5: हाँ जी,
4: ये आप कहाँ से बनाते हैं?
5: हाँ जी।
4: किन से बनती हैं ये दवाइयाँ?
5: हाँ जी सर, इसके लिए होम्योपैथी में ऐसा है कि दवाइयाँ जो हैं इसके लिए हर माध्यम है दवाई बनाने का, उसमें जो हमारी जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं, हमारे केमिकल्स भी आते हैं, हमारे कुछ ऐसी डिजीज़ जो होती हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है किसी पेशेंट्स को, जैसे स्नेक्स विनोम है, स्नेक्स सांप का जहर है।
4: जी जी।
5: तो इस तरह से किसी किस्म की भी हम सिक्स कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है, तो लेबोरेट नहीं करेंगे हम शॉर्टली चलेंगे कि उस कैटेगरीज में हमें उसको हम लेते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल सब्सटेंस को इतना पोटेंशलाइज कर देते हैं कि वो जो सब्सटेंस होता है उसको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको हम प्रिजर्व करते हैं।

0: और प्रिजर्व उस हिसाब से करते हैं कि जो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और जो मेडिसिन तैयार होती है उसमें वो जब पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जब पेशेंट लेता है उसके मेडिसिन को, तो वो उससे साइड इफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जो मेडिसिन हमने दी होती है, एक तो उसकी उससे हीलिंग होती है, उस डिजीज़ की हीलिंग होती है जिस बीमारी के लिए हमने उसको दी है। दूसरा जो है वो हमने जो मेडिसिन दी होती है वो टोटली अब सिम्टम्स के ऊपर रहती है, और उसी टोटली अब सिम्टम्स के ऊपर उसकी एक इम्यूनिटी भी डिवेलप होती है, ताकि आगे एक बार पेशेंट को हमने ठीक कर दिया तो आगे जाके उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि दोबारा वो बीमारी उसको दोबारा अटैक ना करे।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये एक तो जड़ी बूटियों से आप हासिल करते हैं,
0: हाँ जी,
1: या पेड़ पौधों से हासिल करते हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: और दूसरा ये भी है कि केमिकल्स भी हाँ, इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये आपकी जो दवाइयां हैं इस्तेमाल में लाई जाती हैं?
0: हाँ, होम्योपैथी इतना वास्ट साइंस है कि डॉक्टर हैनमैन ने जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने इसको इस तरह से उन्होंने मेडिसिन को डिराइव किया कि हम हर बीमारी को इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं रहती कि होम्योपैथी उससे जो है वो वंचित है। और इस हिसाब से किया है कि उसके एडवांटेजेस ये हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा जो मेडिसिन हम देते हैं वो डिजीज़ को इरेडिकेट करती है, और रेडिकेट करने के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है। लेकिन होम्योपैथी की एक ऐसी साइंस है जिसमें कि डिजीज़ को हम, बीमारी को हम पूरी तरह से शरीर से,
1: यानी जड़ से,
0: जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है होम्योपैथी दवाई,
1: बीमारी के रूट्स पकड़ने,
0: रूट पकड़ के बाहर निकालती है
1: जी, जी।
0: और पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो दोबारा बीमारी अटैक नहीं करेगी।
1: इलाज का तरीका क्या होता है?
0: इलाज का ऐसा तरीका होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट को पूरा लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी, डिजीज़ कोई भी डिजीज़ हो पर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम टोटली अब सिम्टम्स भी लेते हैं कि पेशेंट को अंदर पूरी सिम्टम्स क्या हैं पूरी, और सिम्टम लेने के बाद हम जैसे बाकी पैथी में क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, तो होम्योपैथी में डायग्नोसिस जो वो सेम होती है। जैसे एक निमोनिया का एक मरीज है, 10 मरीज निमोनिया के हैं, बाकी पैथी में क्या होता है कि निमोनिया के मरीज को एक ही दवाई फिक्स होती है कि ये दवाई दी जाती है
1: जी, जी।
0: लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा है कि अगर 10 मरीज होम्योपैथी के हैं, लेकिन हम उनकी पार्टिकुलर सिम्टम्स देते हैं, पार्टी एक निमोनिया का पेशेंट जो है वो दूसरे निमोनिया से पेशेंट कैसे डिफर करता है, कौन सी ऐसी पेकुलरिटी है इसके अंदर
1: जी, जी।
0: और उसी आधार के ऊपर हम वो निमोनिया के पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हो सकता है कि 10 निमोनिया के पेशेंट को 10 अलग अलग दवाइयाँ दी जाएँ
1: जी,
0: क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअलाइजेशन का। और होम्योपैथी में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जिसको हम डायग्नोज करने के बाद पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर देते हैं।
1: आजकल जो हम आम बीमारियां देखते हैं, जैसे जो शुगर की बीमारी है,
0: हाँ जी,
1: या इसी तरह से ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना,
0: हाँ जी,
1: इस तरह की बीमारी है, मोटापा है,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: क्या ये इस तरह की बीमारियों का इलाज?
0: के डायबिटीज की कोई बीमारी लेते हैं, जब मोटापा है, जब ब्लड प्रेशर है, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं कि ये बाकी डायबिटिक पेशेंट से, बाकी ब्लड प्रेशर पेशेंट से कैसे डिफरेंट करता है, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। जहाँ पे पैथोलॉजिकल ग्राउंड्स पे रिमूव करना हो हम उसको लेते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे करना हो उस पर वहाँ पर लेते हैं।
1: यानी
0: एक बार हमने ब्लड प्रेशर को ठीक कर दिया होम्योपैथी में, उसका दोबारा ब्लड प्रेशर नहीं रेज होगा, बाकी पैथीज में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा चैलेंज है इसमें।
1: यानी दवाइयों से ही आप इसको कंट्रोल में लाते हैं?
0: बिल्कुल, दवाइयों से कंट्रोल लाते
1: हैं। तो सक्सेस रेट क्या है?
0: सक्सेस रेट मेरी जो प्रैक्टिस 15 ईयर्स की प्रैक्टिस कठुआ में है, और एज ए स्टूडेंट जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे मैं ड्यूरिंग स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिस करता था, वो भी सक्सेस रेट मेरा जो है वो 95% से अबव रहा है। क्योंकि मैंने रूट काज से कोई ब्लड प्रेशर गया है, मैंने देखा है कि कई सारे पेशेंट्स अदर पैथीज में जब जाते हैं तो उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि जी जी पूरी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई खाना पड़ेगी। लेकिन मैंने जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के ठीक किए हुए हैं उनको आज तक कई बार नहीं हुआ, जैसे यूरिक एसिड का है, गंठिए की प्रॉब्लम है
1: जी, जी।
0: तो लोग जो पूरी उम्र के लिए गंठिए की दवाई खाते रहते हैं जी। तो हमने जो पेशेंट ठीक किए हैं उनको 5 साल बाद भी हमने यूरिक एसिड टेस्ट करवा के देखा, उनका रिपोर्ट वही सेम आई। तो कारण वही है कि हम जो है बीमारी को जड़ से उखाड़ते हैं, और जड़ से उखाड़ने का कारण ये होता है कि बीमारी को हम जो है वो तय तक जाते हैं, और उसी आधार के ऊपर, नेचर लॉ के ऊपर जो है वो होम्योपैथी पर सारी जो है वो बेस्ड है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपनी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। आपकी पसंद का कोई गाना
0: हाँ जी
1: आप सुनवाना चाहेंगे अपने?
0: हाँ, मैं अपने सुनने वालों को ये एक गाइड फिल्म का गाना है जो लता ने गाया है, कांटों से
1: खींच के ये आंचल, देवानंद साहब की फिल्म रही है और वहीद रहमान पर ये गाना पिक्चराइज किया गया है।

0: डॉक्टर ललित शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, बीमारियों का जिक्र हो रहा है, अल्सर एक बीमारी है।
1: हाँ जी,
0: ये क्या है?
1: हाँ सर, अल्सर आपने बहुत अच्छी बीमारी चुनी है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। मैंने देखा कि मैं कठुआ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कठुआ का मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं वो सारे इसी बीमारी से वो पीड़ित हैं। तो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से अपने सुनने वालों को डिटेल में बताऊंगा
0: जी
1: कि मैं जहाँ का जहाँ पानी ख़राब है या कैसा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्सर एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ये अल्सर में अल्सर एक एडवांस स्टेज होती है जब गैस्ट्रिक मुकोजा की स्वेलिंग होती है, गैस्ट्रिक स्टोमक में हमारी स्वेलिंग होती है। अगर उस स्टेज पे हम इसको कंट्रोल ना करें तो अल्सर जो है कि म्यूकोजा में क्या होता है कि उसकी एक ब्रीच आ जाती है। ब्रीच मतलब कि उसको टूट जाता है बीच में, और टूटने से एक जख्म सा बन जाता है। तो वो जख्म बनने से वो अल्सर की फॉर्म ले लेता है, और अल्सर वहीं पर बनता है।
0: इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, एक आम इंसान को कैसे पता चलता है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ?
1: अल्सर वाले पेशेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उसके वो ये हमारा जिसको हम एपिगेस्टिक रीजन बोलते हैं, जो पेट में नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे दर्द रहती है उसको। और अल्सर दर्द जो है वो उसको छोड़ती नहीं है, जो भी खाएगा उसको हजम नहीं होगा। और खाने के बाद भी हजम अगर थोड़ा बहुत हो भी गया, डे बाई डे में क्या होगा कि उसकी हालत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर उसका वेट करके देखें 3 महीने के बाद देखें तो और 2 किलो कम होगा, 6 महीने के बाद देखें 3 किलो कम होगा, 1 साल बाद देखें तो और कम होगा। अच्छा, अगर उस पर उसी मरीज़ को अगर अल्सर भी है तो उसमें क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग भी कभी कभी होती होगी
0: जी जी।
1: अगर अल्सर होगा, अगर उसको सिर्फ हम जिसको गैस ही बोलते हैं, गैस ही होगी जिसको एसिड पेप्टिक डिजीज बोलते हैं, तो फिर उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है।
0: आम शिकायत जब रहती है हमारे इस एरिया में या कहीं भी बात करें तो गैस की,
1: हाँ लोग उसका नाम गैस ही दे देते
0: जी जी।
1: हैं।
0: तो ये क्या है गैस, वो इसी से रिलेटेड है?
1: हाँ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जी, क्योंकि वो स्वेलिंग सबसे पहले, मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले स्टोमक में स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को अगर हम कंट्रोल ना करें तो वो अल्सर की फॉर्मेशन ले लेती है। और स्वेलिंग क्यों होती है, हमारा जो पैनक्रेटिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इनकी जो है वो बढ़ जाना जो है वो स्टोमक में वो ही इसको क्रिएट करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये कितने टाइप का अल्सर होता है?
1: हाँ, अल्सर की एरिया के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। मेन तो हम पेप्टिक अल्सर ही बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर के एरिया जो हैं वो अलग अलग हैं। इसमें ईसोफेगस भी आता है और स्टोमक भी आता है और हमारे ड्यूडनम भी आती है, जो मेनली जो इन्वॉल्व एरिया होते हैं। और रेयरली जो होते हैं वो जेजुनम, एक पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का, उसमें होता है, उसको माइकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, वो भी कई बार इन्वॉल्व होता है। और अल्सर में जो रेशो जो हमारी मेल और फीमेल की बताई गई है, और मेल की जो रेशो है वो 3 है और फीमेल जो है वो 2:1 है।
0: ऐसा क्यों?
1: मेज में ज़्यादा होता है
0: जी, ऐसा
1: क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अल्सर की जो फॉर्मेशन हमारी शरीर में है वो टोटली रिलेटेड है हमारी थॉट्स के ऊपर। जैसे जो ये अल्सर जो है वो जी ज़्यादा उन लोगों को होता है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है,
0: टेंशन वगैरह
1: होते हैं। ये तो हमारा एक काज हो गया। दूसरा सिस्टेमिक डिजीज़ होते हैं, सिस्टम डिजीज़ हैं बॉडी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरह के पेशेंट हैं। फिर कुछ दूसरे काजेज हैं, जैसे कि कोई पेशेंट जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर ड्रग्स लेते हैं, या एस्पिरिन हो गया अपने,
0: या अल्कोहल का इस्तेमाल,
1: अल्कोहल है, ये चीज़ें हैं, और स्मोकिंग है, इन चीज़ों से अल्सर की फॉर्मेशन जाता है। और ये देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो नॉन स्मोकर में बहुत कम पाया गया है, जो स्मोकर्स में थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। अल्कोहल तो मेन काज है ही इसका।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अल्सर के स्टेज होते हैं?
1: अब इनिशियल स्टेज में सर अल्सर की ये होता है कि सिर्फ पेशेंट को पेन ही फील होती है, और पेन के वो इतना लाइट नहीं लेता, वो कहता है कि ऐसे कोई छोटी मोटी टेबलेट गैस।
0: ये कहाँ पे पेन होती है?
1: जो स्टोमक के रीजन में पेन होती है,
0: जो नाभि
1: के जस्ट 2 इंच ऊपर हम चले जाएं तो उसको एपिगेस्टिक रीजन बोलते हैं, तो वहाँ पे पेन होती है पेशेंट को। और पेशेंट ऐसे लापरवाही बरतता है, या अगर वो गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, बाहर की चीज़ें कोई इस्तेमाल कर, अल्कोहल वगैरह, तो वो उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वो स्वेलिंग जो है वो बढ़ती रहती है। वो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है पेन के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसकी भूख भी कम हो जाना, बंद हो जाना, और बंद होने से फिर उसके नेक्स्ट सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है वो सेकंड स्टेज में ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम कम आती है उसको, थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग जो है वो भर जाती है, पेन तो होती रहती है, पेन तो छोड़ती नहीं उसको। अच्छा, अगर अल्सर के अल्सर में अगर वो जो पेप्टिक अल्सर की हम बात कर रहे हैं, अगर अल्सर जो स्टोमक में हो तो पेशेंट की ये सिम्टम्स होती हैं कि वो खाना खाने से उसको रिलीफ मिलता है थोड़ा
0: जी,
1: ठीक है। अगर वो ड्यूडनल में अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर जो है उसकी हमने एज भी क्लासीफाई की हुई है, 45 ईयर्स के अबव होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी आते हैं, ये गैस्ट्रिक ये स्टोमक में होता है, तो स्टोमक के अगले हिस्से में हो जाता है पीछे भी, जिसको हम एंट्रम और पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है, उसमें क्या होता है कि ड्यूडनम वाले ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद पेन होती है, और रिलीफ जो है वो 2-3 घंटे के बाद उसको मिलना शुरू हो जाता है, जब खाना थोड़ा हजम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग जो है अल्सर वाले पेशेंट को छोड़ती नहीं है। तो ब्लीडिंग कम होने से, ब्लीडिंग होने से जिसको हिमेटाइसिस बोलते हैं, ब्लीडिंग होने से पेशेंट को एनीमिया भी हो जाता है, उसे
0: जब
1: तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है,
0: यानी ब्लड लॉस,
1: ब्लड लॉस भी होता है अल्सर वाले पेशेंट में।
0: डॉक्टर साहब, हम अगले हिस्से में ज़रूर बात करेंगे इलाज और परहेज के बारे में, लेकिन आपकी पसंद का एक और गीत हम सुनना चाहेंगे,
1: पाकिजा फिल्म का जो अपना मौसम है आशिकाना
0: जी, मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना,
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है।

0: दूसरे डॉक्टर ललित शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आए हैं, इलाज के बारे में जानना चाहेंगे।
1: और जैसे कि हम अल्सर के बात कर रहे हैं, इसके इलाज में हम क्या करेंगे कि सभी पेशेंट्स को अल्सर हैं, 10 पेशेंट को अल्सर हैं, लेकिन बाकी पैथीज में क्या है, जितनी भी हमारी बाकी पैथीज हैं
0: एक ही तरह की ट्रीटमेंट होता है,
1: ट्रीटमेंट एक ही किस्म का होता है।
0: यहाँ पे आप,
1: हम क्या करते हैं कि पेशेंट के डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को अल्सर है, हम फिर अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाई उसकी सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि एक मरीज जो है वो दूसरे मरीज से कैसे डिफर कर रहा है।
0: अच्छा, यहाँ पे अल्सर की जब हम बात करें, हाँ जी, तो इलाज के बारे में किस तरह के इन्वेस्टिगेशन होता है?
1: हाँ, इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात आती
0: है,
1: अगर एंडोस्कोपी में वो सारा क्लियर आ जाता है, अगर एंडोस्कोपी में क्लियर हो जाता है तो फिर हमें कई बार डर रहता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंट तो नहीं है। एक बिनाइन होता है अल्सर, एक मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट जिसको हम कैंसर की क्लियर कट होता है, बिनाइन को हम कैंसर नहीं कहते। तो एंडोस्कोपी, अगर वो उसको मैलिग्नेंट हो, जैसे कैंसर की स्टेज हो, तो उसकी हम बायोप्सी भी करना पड़ती है, वो एंडोस्कोपी से होता है। तो अगर ऐसा डाउट नहीं है हमें, जैसे कि गैस्ट्राइटिस ही है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ही है जिसको हम अल्सर नहीं कहेंगे, तो उसके लिए हम बैरियम मिले एक टेस्ट होता है, वो करवा सकते हैं। एक्सरे में भी इसके क्लियर हो जाता है,
0: पिलाते हैं कुछ,
1: हाँ, बैरियम की बैरियम मिल में पिलाते हैं, उसमें वो कैप्स ही होती हैं, कैप्स ही हमें पता चल जाता है। लेकिन एंडोस्कोपी से हमें जो अल्सर की वो क्लियर फॉर्मेशन पता चल जाता है कि ब्रीचेस जो है वो बड़े हुए हैं, अब जख्म जो बड़े हुए हैं।
0: तो इलाज,
1: इलाज के लिए हम अल्सर के लिए, एक तो हम हमारी होम्योपैथी में क्या है कि हम एक्साइटिंग काजेज और मेंटेनिंग काजेज जो है वो सबसे पहले, ऑब्स्टेकल्स जो हमारी इलाज में है वो रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। कि पेशेंट को हम दवाई देते रहे, एंटासिड्स वगैरह या एलोपैथी में देते हैं, एंटासिड्स देते रहें और उसको एक्साइटिंग काज या ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो रिमूव ना करें। मेडिसिन तो हम आपकी सेलेक्ट करेंगे सही, जो इसके आपको पूरा फायदा होगा और परमानेंट आपका इलाज भी होगा, लेकिन आपको जो एक्साइटिंग काजेज डिजीज़ के, जो पार्टिकुलर डिजीज़ के जो एक्साइटिंग काजेज हैं उनको 100% रिमूव करना पड़ेगा। एक्साइटिंग, मेंटेनिंग और ऑब्स्टेकल्स जितने हमारे आ रही हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे हम एक एग्जांपल अल्सर की ले लेते हैं, तो उसमें एक्साइटिंग काजेज ये होते हैं कि पेशेंट अगर अल्कोहल ले रहा है वो बंद करे, रिच फूड्स ले रहा है वो बंद करे, मिर्च मसाला ले रहा है वो बंद करे, फैट्स जो है वो बंद करे, क्योंकि इनडाइजेस्टिबल जो डिलेड डाइजेशन चीज़ें होती हैं, जो डाइजेशन को डिले करती हैं, वो चीज़ें ना लें, लाइटली चीज़ें हैं, बॉइल्ड चीज़ें हैं वो प्रेफर करें, ताकि हमारे जो है वो स्टोमक को लोड ना ज़्यादा पड़े डाइजेस्ट करने में। और सेकंडली जो है वो मेडिसिन हम उसको उस समय प्रेस्क्राइब कर देते हैं, अगर पेशेंट हमारा सपोर्ट करता है, उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि लंबा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव करेगा। और इलाज में फिर मेडिसिन जिस हिसाब से सेलेक्ट होगी, वो सारे उसमें अलग अलग मेडिसिन हैं और मेडिसिन भी वो डिफरेंट करती हैं, जैसे कि अल्सर के केस में 10 पेशेंट हैं तो हम डिफर करते हैं कि ग्रेफाइट्स हमने प्रेस्क्राइब की, नाइट्रिक एसिड हमने प्रेस्क्राइब की है, जी मेडिसिन के नाम हैं कुछ, म्यूरेटिक हमने,
0: यानी प्रायोरिटी आप परहेज को देते हैं,
1: प्रायोरिटी परहेज को देते हैं, परहेज के ऊपर ही मेडिसिन आधारित होती है, क्योंकि हमने एक अल्सर के पेशेंट को दूसरे पेशेंट को डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो अगर डिफ्रेंशिएट किया तो वो डिफ्रेंशिएट इसी वजह से हुआ कि वो उसका इलाज हम अच्छी तरीके से कर सकें। इसमें दोनों मेडिसिन क्यों डिफर कर रही हैं, क्योंकि दोनों पेशेंट एक को अल्कोहल नहीं ले रहा है उसके बावजूद भी उसको अल्सर हो गया, क्यों हुआ? अब लेडीज़ को भी पेप्टिक अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, लेकिन लेडीज़ हमारे इंडिया में इतनी लेती नहीं है अल्कोहल, लेकिन उनको भी हो रहा है। उसकी सेकेंडली जैसे कि अल्सर की हम एग्जाम्पल ले, कि अगर पेशेंट जो है वो जनरल एक टर्म में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, अल्सर वाला पेशेंट जो अगर सुबह उठ के पानी पी लेगा तो उसके जितने भी एसिड हैं वो डिल्यूट हो जाएंगे, वो खाना हजम करने में उसको डिले करेंगे। तो अगर सबसे पहले वो नाश्ता ही करे तो वो एक उसके एसिड कंज्यूम हो जाएंगे, एसिड कंज्यूम होने से उसकी जो है वो,
0: यानी खुद ही लोग पानी पी लेते हैं सुबह, ऐसा भी नहीं करना चाहिए,
1: ऐसा नहीं करना चाहिए जिन लोगों को जो स्टोमक स्वेलिंग होती है, स्टोमक स्वेलिंग से ही जैसे बताया कि वो अल्सर की फॉर्मेशन लेटर ऑन वो कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर ललित, ये बताइए क्या सक्सेस रेट रहा है, अगर इस तरह अल्सर का पेशेंट आपके पास आता है, तो अभी तक आपका एक बहुत खासा तजुर्बा है, 15 साल का,
1: हाँ जी,
0: क्या देखा आपने?
1: हाँ सर, ये अल्सर का जो पेशेंट होता है ना, ये अल्सर एक लास्ट स्टेज होती है, जो गैस्ट्रिक के पेशेंट होते हैं ये लास्ट स्टेज में ही अल्सर बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि जख्म हो गया पेशेंट को, तो इसका इलाज करने में थोड़ा समय लग जाता है,
0: यानी हम मान के चलें,
1: और सक्सेस रेट मेरा जो रहा है वो 95% से अबव रहा है अल्सर के केस में भी।
0: यानी हम मान के चलें कि गैस्ट्रिक पेशेंट जितने भी हैं वो ठीक हो सकते हैं, अगर होम्योपैथी के जरिए वो इलाज करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: डॉक्टर ललित, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का एक और गीत हमें बताइए जो अपने सुनने वालों तक आप पहुंचाना चाहेंगे।
1: ये जहर फिल्म का गाना है, ये यानी अगर कोई मिल जाए।
0: जहर फिल्म से गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ललित शर्मा से की गई बातचीत। विषय था अल्सर, कारण और उपचार। इनसे बातचीत कर रहे थे रमेश मरहट्टा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित जैन, निदेशक जनगणना निदेशालय हरियाणा, आप सबसे मुखातिब हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है, जहाँ विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में सटीक और अद्यतन आंकड़े हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। इसी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। जनगणना 2027 कई मायनों में विशेष है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को स्वयं जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा में स्वयं गणना सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आप घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात 1 मई 2026 से जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान प्रगणक आपकी जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर तक जाकर एकत्रित करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनगणना में दी गई आपकी सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, और जो भी आप हमें बताएंगे वह सर्वर्स के ऊपर बहुत सिक्योरिटी के साथ रखे जाते हैं। कोई भी अथॉरिटी इस जानकारी को हमारे से नहीं ले सकती। देखिए, टोटल 33 क्वेश्चंस इस बार की जनगणना के अंदर है, तो यूनिकनेस इस बार हम पूछ रहे हैं कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो समय के साथ, बदलाव के साथ हमने ये सवाल भी ऐड किए हैं। हमारी हेल्पलाइन 1855, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1855 वो खुल चुकी है। यदि हरियाणा के किसी नागरिक को कोई कष्ट है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है 1855। आप अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से डायल करिए, ये सीधा हमारे कॉल सेंटर के अंदर कनेक्ट होगा और उनको स्वयं जनगणना या ऑर्डिनरली कोई भी जनगणना से संबंधित सवाल है उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा।
1: मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी करें, सही और पूर्ण जानकारी दें और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज, अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
3: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ ਸੁਣ
2: ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੈਗਾ

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी देर होगी मुझे। सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार, मेरा मैं हूँ भारत सोपोरी और अंबाला कैंट से प्रसारित होने वाला रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 से मैं आप सभी के लिए इस समय हाजिर हूँ। और पटल पर हमारे पास जितेश जी है और हमारे दो मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ,
1: जब तक गुरेंद्र जी रामनिवास जी,
0: जी जी मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि आज वीरेंद्र जी ने कहा था कि मैं आज मीटिंग में होऊंगा, शायद मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, बट मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और मैं चाहूंगा कि जितेश जी और वीरेंद्र जी, सॉरी गुरविंदर जी, आप आज के जो मेहमान हैं उनके नाम बताइए, ताकि हम उनको संबोधित कर सकें।
2: बिल्कुल सर, आज देर आए दुरुस्त आए, रेडियो एनजीएफ 90.4 की तरफ से सारे हरियाणा को राम राम, और राम राम हरियाणा कैंपेन का आज हिस्सा बने हैं हमारे साथ अंबाला जिले के अकबरपुर गांव के सरपंच राम निवास जी, और हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम सचिव। मैं अपने सारे हरियाणा प्रदेश के वासियों को बता दूं, जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो अपनी सलाह सुझाव के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 88

0: 904904 पर। और बात करेंगे सर रामनिवास जी से उनके अकबरपुर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर, और बात करेंगे ग्राम सचिव जी से। हमारे साथ प्रीतम यादव जी जुड़े हुए हैं अपना रेडियो से, और हमारे साथ भारत जी जुड़ गए हैं अंबाला रेडियो से, रेडियो एनजीएफ की तरफ से। मैं जितेश सर, सबसे पहले सरपंच साहब आपका स्वागत करेंगे राम हरियाणा में, और धन्यवाद कहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। हम बात करेंगे सर आपके 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर, कि 3.5 साल में क्या क्या कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत में अब तक करवाए हैं, और आपके ग्राम पंचायत के साथ साथ आपके सरपंच बनने के सफर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपने सरपंच बनने का फैसला अपने से लिया, फैमिली से लिया, या फिर ग्राम पंचायत से मोटिवेट होकर लिया। तो एक तो आपके सरपंच बनने के सफर के बारे में जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे कि आपने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य कराए, और एक ऐसा काम जो सबसे अद्भुत सबसे यूनिक हो।
1: जी एक मिनट मैं लेना चाहूंगा। रामनिवास जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और हम आपके गांव आए हैं, आपका गांव बहुत ही सुंदर है, और माफी चाहूंगा कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई, और आज रामनिवास जी आप और मैं अंबाला को रिप्रेजेंट करेंगे, और पूरे हरियाणा में ये बात जा रही है, आपकी बात हमारे रेडियो से भी लाइव हो रही है, पलवल से लाइव हो रही है, चरखी दादरी से, नारनौल से, यमुनानगर से, और साथ में योगेश जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो रामनिवास जी आप शुरू करिए अपने परिचय के साथ, और आप बताइए कि आपका गांव अकबरपुर सबसे अच्छा गांव क्यों है।
2: नमस्कार सभी श्रोतागणों को, कहते नमस्कार सभी हरियाणा, राम राम हरियाणा की टीम को, पूरी को नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, ये तो आपका बड़प्पन है भी हमारे गांव को आप सबसे अच्छा मानते हैं, बाकी गांव आपने देखा है, घूमा है, तो साफ सफाई का पूरा अच्छे से प्रबंध किया हुआ है, किसी भी तरफ आपको गंदगी नहीं मिल पाएगी। और सर सरपंची बनने का, जैसे सर बता रहे थे भी सरपंच कैसे बने, सरपंच तो सर इलेक्शन शुरू होने से 3 दिन पहले जब नॉमिनेशन भरा जा रहा था, तब मन में आया भी चलो सरपंच बन के देखते हैं, शायद गांव के विकास हिस्सेदारी दे पाए। तो अचानक ही प्रोग्राम बना सर, और सभी ग्रामवासियों ने एक तरफा सपोर्ट किया, जनरल इलेक्शन था, अच्छे से इलेक्शन में सभी ने, छोटे बड़े सब ने सपोर्ट की। और सर रही विकास कार्यों की बात अगर करते हैं, तो छोटी सी पंचायत है, पंचायत के पास अपना कोई फंड नहीं है, जो भी पैसा है सब सरकार के से ही आता है, और उसी पैसे को हमने गांव में विकास कार्यों में लगाया है। और जैसे अगर बात करें तो गांव में, पूरे गांव में आपने देखा है सर, सीसीटीवी कैमरा हर नुक्कड़ पे, हर चौक पे लगा हुआ है, इवन बात करें तो मेन बस स्टॉप से लेके और पूरे गांव में लगे हुए हैं, सोलर लाइट का प्रबंध पूरे गांव में है सर, पाइपलाइन की व्यवस्था, नई पाइपलाइन की व्यवस्था भी कराई गई है, बहुत और भी बहुत सारे कार्य हैं। और अगर जो सरकार, हरियाणा सरकार ने अभी एक प्रोग्राम चलाया था तालाब के ऊपर, वो तालाब भी हमने अच्छे से मेंटेन साफ सुथरा किया हुआ है, उसकी तारबंदी भी करा रखी है अभी, ताकि कोई पशु या कोई इंसान उसमें ना गिर पाए, अच्छे से गहराई है तालाब की, पानी स्टोर किया हुआ है उसमें। और अगर सर बात करें स्कूल की, स्कूल में भी हमने एक वाटर कूलर लगाया हुआ है, और कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं, स्कूल बड़े अच्छे से मेंटेन हो रहा है सर।
1: अकबरपुर
2: और सर जो
1: जी हम आपसे सवाल भी करेंगे और आपसे जानेंगे भी गांव के बारे में। जहां तक मेरा सवाल है, उस समय जब हम आपके गांव में आए थे तो आपके स्कूल भी हम गए थे, जो वहां पर स्कूल है, और बच्चों के साथ जब हमने बात की तो बच्चों को भी पता है कि गांव में तरक्की हो रही है, साफ सुथरा गांव है, और आज हमें बहुत खुशी है कि आज आप के माध्यम से ही हम आपके गांव के बारे में जानेंगे, और हम चाहेंगे अगर आपका गांव साफ सुथरा है तो हरियाणा के सभी गांव साफ सुथरे होने चाहिए, और आपकी आवाज क्योंकि हर जगह पर जा रही है। मैं चाहूंगा कि प्रीतम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रीतम जी स्वागत है आपका, आप भी कहीं बाहर है आज लग रहा है। अगर रामनिवास जी के लिए आपका कोई प्रश्न है जितेश जी आपके, और फिर हम उन प्रश्नों के उत्तर लेके फिर हम योगेश जी से बात करेंगे। जी जितेश जी, प्रीतम जी, प्रीतम जी आज आप कहां पर हैं? प्रीतम जी को आवाज मेरी मिल रही है?
3: सर मैं आज बाहर आया हूं
1: जी। आपकी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जी जी, आप वीडियो
3: में आया हूं तुषार के पास।
1: जी जी आप वीडियो
3: मिल रही है? भारत जी गांव है वहां।
1: आपकी आवाज नहीं आ रही
3: है, इंटरनेट का प्रॉब्लम। मेरा सरपंच साहब की मैं बातें सुन रहा था, सरपंच साहब ने कहा कि इलेक्शन का जो नामांकन है उससे 3 दिन पहले। वर्षों पहले स्टार्ट हो जाता है, 2-4-5-6 साल लगा देता है, उसके बाद सरपंच या कोई भी बड़ा नेता बनता है तो उसके। लेकिन सरपंच साहब ने तो 3 दिन में ही ऐसे विचार किए और इलेक्शन के लिए सरपंची के लिए नामांकन कर दिया, ऐसी क्या घटना घटी कि उन्होंने ये विचार किया?
1: जी रामनिवास जी।
2: सर घटना तो घटना अगर बात करें सर, जो पुराने सरपंच का इलेक्शन लड़ चुके थे लोग, उनमें से एक व्यक्ति से बात हुई भी, वो इलेक्शन लड़ रहा था, दो बंदे खड़े थे सर, एक बीसी कैटेगरी से था और एक एससी कैटेगरी से। जो एससी कैटेगरी वाला बंदा था, मैंने उसको कहा भाई साहब आप नहीं बन पाओगे, आप गांव में रहते हैं, आपका होल्ड नहीं है, आप फ्री में हार जाओगे, पैसा खराब करोगे। तो उसके उसने कुछ ऐसी बातें की जो दिल को लगी सर। उसने कहा भाई गांव में और है ही नहीं इलेक्शन लड़ने वाला, कौन लड़ सकता है, और मैं तो 34 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो बड़ा अजीब सा लगा सर मन को। तो दूसरी बात, मैंने उसको कहा भी आप हार जाओगे, उसने एक बात रखी सर, उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से चाहे सारा गांव इलेक्शन लड़ ले, मुझे कोई फर्क नहीं, सब सारा खड़ा हो जाए। और रही हारने की बात सर, मैं तो 34 साल से हारता हुआ आ रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: अब सर मैंने कहा सर मैं आपकी आपकी सपोर्ट करता हूँ, अगर मुझे हारने की तरफ ही खड़ा होना है तो फिर मैं अपने लिए मैं खुद हार के दिखाऊंगा, मैं आपके लिए क्यों हारूं। बस इस बात ने सर मोटिवेट किया और 3 दिन में ही मैंने वो तैयारी की जो सभी ने 6-6 महीने या 7-7 10-10 महीने पहले तैयारी की थी। और दूसरी बात सर, गांव वालों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, उनका प्यार सर जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा।
1: जी जितेंद्र जी, गुरविंदर जी
4: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गांव के बारे में, जैसे आबादी कितनी है गांव की, वोट कितने हैं, और जो अभी आपने बोला कि एससी पॉपुलेशन के बारे में सवाल आपने बोला है, तो एससी पॉपुलेशन कितनी है और कौन कौन सी वहां पे बरादरी रहती है आपके गांव में?
2: सर अगर गांव की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लगभग 750 के लगभग है, और वोट की अगर बात करें तो 550 के लगभग वोट है, और 3 कास्ट रहती हैं जिसमें एसटी है 52% है, बीसी है 48%, एक जनरल कास्ट से है, एक घर उनका है, उनकी 10-1 वोट है, बस ये 3 कास्ट रहती हैं गांव में।
1: जी
4: उस 10 से कितने ग्राम पंचायत?
2: जी सर
4: ग्राम पंचायत के 10 से कितने हैं कुल वार्ड में? ग्राम पंचायत
2: 6 वार्ड है सर, 6 पंच है और 1 सरपंच है।
4: 6 पंच में से 3 महिलाएं हैं?
2: 2 महिलाएं हैं, 4 है? 2 महिलाएं हैं सर।
1: जितेश जी आप पूछिए, आपका प्रश्न क्या
0: सर
1: है?
0: सबसे पहले तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले सर अकबरपुर ग्राम की पंचायत को हम राम राम हरियाणा परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आगे भी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप शासन और प्रशासन के साथ मिलकर आगे अपने गांव के विकास के लिए कार्य करते रहें। पीछे जैसे गुरविंदर जी ने आपसे पूछा कि आपके गांव में कितने वार्ड है, आपने बताया 6 वार्ड है जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। सरपंच साहब आपसे राम राम हरियाणा के मन से बिल्कुल आपके खुले विचारों के साथ ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। दूसरा भारत सर, आज आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, तो हमारा जो झज्जर जिला है
1: जी,
0: उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे देश की महिलाएं, जो हमारे देश की शिक्षित और प्रशिक्षित महिलाएं हैं उनके हाथ में, यानी वहाँ का SP DC CTM और सारे लोग
1: महिलाएं,
0: वहाँ SDM मैडम जो है वो सारे ही लोग मतलब फीमेल्स है, महिलाएं हैं। तो हमारे देश की महिलाओं, हमारे देश की फीमेल्स जो है, वुमेन्स जो है, उनके लिए सर एक बड़ी अच्छी और एक बड़ी ही सराहनीय और दूसरी प्रेरणादायक ये चीज है कि पूरे जिले का पूरा ही प्रशासन महिलाओं के हाथ में है और वो सारी जिम्मेदारी को अच्छे से सर निभा भी रहे
1: जी।
0: सरपंच साहब आपसे बात करना चाहेंगे, हम ग्राम सभाओं के बारे में और खुले बात करेंगे क्योंकि हम सारे लोग भी सर ग्राउंड पे ही काम करते हैं। हम सारे लोग आप ही की तरह हरियाणा के अलग अलग जिले और अलग अलग गांवों से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे खुलकर बात करना चाहेंगे ग्राम सभाओं को लेकर। पीछे भी हमारा ये टॉपिक रहा है और दूसरे सरपंचों से भी कि ग्राम सभाओं में जैसे हमारे दो वार्ड से दो महिलाएं पंच है, तो उनकी कितनी हिस्सेदारी है ग्राम सभाओं?
2: ग्राम सभा में सर हर ग्राम सभा में प्रेजेंट होती हैं दोनों लेडीज, और खाली वो दोनों पंच नहीं आती, पूरे गांव से लेडीज आती हैं
0: जी।
2: तकरीबन
0: उनके सामने आप कभी जी जी सर सॉरी बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, ग्राम सभा में हम अपने ग्राम वासियों के साथ अपने जो विकास का एजेंडा है वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमने पीछे ये काम किया है और आगे हम ये काम करना चाह रहे हैं, और इस पर आपका क्या दिशा निर्देश है, आपके क्या सलाह है, क्या सुझाव है?
2: बिल्कुल सर, ये सबसे शेयर किया जाता है और पूछा जाता है भी आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। जो जो लोग हमें बताते हैं भी ये काम कराने हैं, उनको हम सरकार को प्रपोजल बना के रेजुलेशन डाल के भेजते हैं, कुछ उनमें से मंजूर भी हो गए हैं जो हमने गांव में कराए हैं। तो बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भी जो गांव में हो, किसी चीज की प्रॉब्लम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इवन अगर बात करें सर, पूरे गांव में कोई झगड़ा नहीं होने देते, इससे बेटर और क्या हो सकता है सर
1: जी।
2: कभी थाने की लोड नहीं पड़ी हमारे गांव को
1: जी।
2: ठीक है सर, बड़े शराफत से रखते हैं और गांव वाले पूरा साथ निभाते हैं सर।
1: रामनिवास
0: बिल्कुल सर, गांव वालों के साथ के
1: प्लीज
0: गांव वालों के सर सहयोग सारी चीजें मुमकिन हो पाती है, और हम आगे भी आपसे अपील करेंगे और अनुरोध भी रहेगा कि आगे भी आप अपने गांव की छोटी मोटी चीजों को ऐसे ही ग्राम स्तर पर और पंचायत के थ्रू निपटाते रहें, ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर ना काटने पड़े। आप देर से भारत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं भारत जी से कहूंगा कि सर आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखें सरपंच साहब के साथ
1: जी। रामनिवास जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हमारे पास पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव के सरपंच हमारे साथ बात करते हैं, और हम कहीं पर अगर कोई कमी हमें महसूस होती है तो हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए थे। रामनिवास जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी हम बात कर रहे थे कि कौन से कितने लोग हैं, हम अब उन बातों को दोहराएंगे नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि गांव का जो सरपंच होता है वो गांव का प्रधानमंत्री होता है। क्या आपका आपके गांव में सचिवालय आपने बनाया है जी? रामनिवास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामनिवास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? जितेश जी, जब तक हमारे पास दोबारा जुड़ते हैं आप, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आज के डेट में एक सरपंच जो भी किसी भी गांव का है, जो भी वो निश्चय करता है, क्योंकि उसको लोगों ने मनोनीत किया है, उसको वोट दिया है, उसको अपना साथी बनाया है गांव की उन्नति के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि जब एक व्यक्ति सरपंच बनेगा और उसके बाद वो गांव में उसके उत्थान के लिए सिर्फ सोचता है, किसी और विषय में नहीं सोचता है। तो मैं अभी सरपंच जी जुड़ेंगे, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने ऐसा काम किया कि जो और किसी गांव में नहीं हुआ। जितेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आमतौर पर जो सरपंच गांव का बनता है, जब इलेक्शन होती है तब विरोधी भी होते हैं, तब साथी भी होते हैं, बट जब इलेक्शन ओवर होता है तो फिर वो मुखिया बनता है गांव का, तो बाकी लोग मेरे हिसाब से साथ तो देते हैं उस सरपंच का। आपका क्या ख्याल है?
0: बिल्कुल सर, हमारे हरियाणा की जो ग्राम पंचायतें हैं
1: जी,
0: उनके बारे में आज थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सरपंच साहब भी हमारे साथ अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क का कोई इशू है
1: जी।
0: और गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम सचिव और सरपंच साहब अभी नेटवर्क इशू की वजह से हमारे साथ डिस्कनेक्टेड हो गए, जल्दी कोशिश रहेगी उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और राम राम हरियाणा पर ग्राम सचिव और अकबरपुर के सरपंच के साथ ढेर सारी बातें की जाएं, विस्तार से बातें की जाएं। सर, हम सारे लोग हरियाणा के अलग अलग कोनों से राम राम हरियाणा कैंपेन लेकर जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है उसको वाया सोशल साइट के प्लेटफॉर्म या फिर रेडियो, हमारे जो कम्युनिटी रेडियो सारे हरियाणा में काम कर रहे हैं उनके थ्रू लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए कि उनके राइट्स क्या क्या है, पंचायती राज संस्थान के राइट्स क्या क्या है, लोगों के राइट्स क्या क्या है, कैसे आम कम्युनिटी और गांव के जो प्रतिनिधित्व है वो आपस में अपना टाई अप करके कैसे ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्राम पंचायतों में कैसे आगे काम कर सकते हैं। तो सर, पीछे जैसे बात हुई कि हमारे पलवल जिले की हम बात करें और हम पलवल जिले की क्या, हम सारे हरियाणा की अगर बात करें तो सारे हरियाणा में पंचायती राज का बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और सर, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी वार्ड से एक पंच इलेक्शन लड़ रहा है और वो अगर निर्विरोध जीत के आ रहा है, उसके सामने कोई फाइट नहीं कर रहा है, वो निर्विरोध जीत के आ रहा है आपसी भाईचारे और आपसी तालमेल के साथ, हरियाणा पंचायत 50,000 रुपए उसे निर्विरोध जीत के लिए देती है।
1: अच्छा।
0: कि आप 50,000 रुपए अपने वार्ड में कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं अपने लिए। ऐसे ही सर हम बात करें निर्विरोध सरपंच की, तो निर्विरोध सरपंच बनने के बाद भी हमारा जो हरियाणा पंचायती राज है या फिर हमारी हरियाणा सरकार है वो अलग से स्कीम्स पंचायतों के लिए चला रही है कि आप इलेक्शन ना लड़े, आपस में भाईचारा और तालमेल बना के रखे, निर्विरोध जो आपको लगे, सारे गांव को लगे कि भैया निर्विरोध हम इसको जिता देते हैं या फिर इसको सरपंच बना देते हैं, तो उनके लिए अलग से फंड की योजना हमारी हरियाणा सरकार और पंचायती राज संस्थान बना
1: एक तरीके
0: रहा है।
1: से
0: सर के भारत जी, मैं आपके सवाल पे आना चाहूंगा।
1: जी जी, एक तरीके से तो गांव का ही उसमें फायदा होता है कि अगर आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे और उसके साथ साथ अगर वो निर्विरोध चुने जाते हैं तो फिर उनको ये फायदा होता है, गांव को ही फायदा उससे मिलता है। चलिए, अभी हमारे पास रामनिवास जी जुड़ गए। रामनिवास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके गांव में हर घर में नल से जल आता है? लगता है रामनिवास जी हमारे पास, हमारी आवाज उन्हें, मैं योगेश जी से बात करना चाहता हूं। योगेश जी ग्राम सचिव हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपको
3: जुड़े हुए हमारे साथ?
1: योगेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? योगेश जी नमस्कार। योगेश जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि हमारी श्रोताओं को भी आपकी जानकारी मिले, और आप ये मुझे बताइए कि ग्राम सचिव होने के नाते आप कौन कौन से गांवों को देखते हैं और आपका जो एरिया है आप किस किस जगह पर काम करते हैं। जी योगेश जी,
5: तो मेरा नाम योगेश है जी और मैं अम्बाला में शाह ब्लॉक में पोस्टेड हूँ
1: जी।
5: मेरे अंडर में भी 3 गांव है जी, 2 गांव पहले से है अकबरपुर और सेकंड है केशवपुर, उससे थर्ड है अभी जो नवाद हुआ था वो गतनगर।
1: नहीं मैंने सुना नहीं, अकबरपुर कौन सा गांव? अकबरपुर
5: सेकंड है जी केशवपुर।
1: अच्छा केशवपुर जी,
5: हाँ जी। और जो तीसरा गांव है वो रिसेंट में हुआ जी, वो गतनगर।
1: अच्छा जी जी जी जी, बताइए जब आपको साहब ब्लॉक में रिक्रूट किया गया, उसको वहां पे आपको पोस्ट किया गया, क्या आपको कुछ ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से आपने इन गांवों का जो जो गांव की उन्नति है वो करनी है?
5: सर हमें जो पुराने ग्राम सचिव हमारे अभी, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग नवम्बर में हुई थी 2024 में
1: जी,
5: सभी हमें नए रिक्रूट हुए थे, तो उसके बाद हमें जो पुराने ग्राम सचिव के सहयोग से ही हम जैसे आगे का काम हमने सीखा है पूरी तरह से। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो भी हम नीलो खेड़ी पीछे गए थे ट्रेनिंग में, 1 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी
1: जी,
5: तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग सर जी करवाई जाएगी
1: जी,
5: वो ट्रेनिंग अभी पेंडिंग है, तो ट्रेनिंग वो करवाएंगे कम्प्लीट है जो, लेकिन हम जो हम पुराने ग्राम सचिव हमारे उनसे सहयोग लेकर अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस स्टाफ भी जैसे सर पहले से यहाँ, तो उनसे पूछ लेते कि कैसे क्या कुछ करना है, तो में दिक्कत आती है। तो
1: योगी जी कितना टाइम हो गया आपको? हेलो, कोई कॉलर है क्या?
6: हेलो,
1: हाँ जी कोई कॉलर है? हेलो।
6: हाँ जी,
1: हाँ कोई कॉलर है तो आप नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
6: मैं गांव हंडी खिला जिला से राधे श्याम शर्मा बोल रहा हूँ।
1: जी श्याम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
6: मैं आपके राम राम हरियाणा प्रोग्राम का नियमित सोता हूँ।
1: जी जी धन्यवाद।
6: जिस प्रकार प्रतिदिन विभिन्न गांवों के सरपंच यहाँ लाइव आते हैं
1: जी,
6: तो मेरी भी इच्छा है कि मेरे गांव के सरपंच भी इसमें भाग ले सकते हैं क्या?
1: जी जी क्यों नहीं ले सकते हैं। ये कार्यक्रम राम राम हरियाणा सारे हरियाणा प्रदेश के लिए है। मैं गुरविंदर जी को कहूंगा कि इस गांव का नाम नोट करें और उन सरपंच जी से बात करें, अगले दो या तीन दिन के बाद जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में उनको जोड़ें। आप अपने सरपंच जी का नाम बताएं और गुरविंदर जी नोट करेंगे और गांव का नाम एक बार फिर बताएं।
6: कपिला शोराण हांडी खेड़ा सिरसा।
1: जी जी
6: जी, मैं चौहान साहब को उनका नंबर दूंगा।
1: हाँ ठीक है, चौहान जी भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे पर क्योंकि वो अभी मीटिंग में है, हो सकता है कि वो हमारे साथ बीच में जुड़ जाएं। आपकी जो जानकारी गुरविंदर जी आपने नोट कर दी।
4: गांव का नाम बताइए दोबारा।
6: गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा।
3: हांडी
4: किस ब्लॉक में पड़ता है?
6: ये सिरसा ब्लॉक में पड़ता है जी।
4: सिरसा ब्लॉक और सिरसा जिला, ठीक है, हम उनको जोड़ देंगे।
6: सिरसा ब्लॉक है,
1: ठीक है,
4: ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका।
1: श्याम जी, श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो है ये हरियाणा वासियों के लिए ही है ताकि हम ये जाने कि दूसरे गांव में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं बाकी श्रोताओं को भी कहूंगा कि अगर वो जुड़ना चाहे तो जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
4: ट्रेनिंग नहीं दी तो आपको फील्ड में काम करने करते
3: हुए सर थोड़ी वहां प्रॉब्लम आ रही है।
1: जी जी आवाज,
4: जैसे आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो आपको का सामना करना पड़ रहा है काम करने के लिए का फील्ड में।
3: सर जैसे कि कोई इंसिडेंट होता है कि केस में पूछा जाता है कि हमें पता नहीं होता उस चीज के बारे में, जैसे कोई शिकायत कर देता है किसी चीज से, तो हमें प्रॉपर डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं होता है, तो हमें जो हमारे प्राइम सेक्रेटरी है या हमारा जो ब्लॉक का स्टाफ है पहले इनसे पूछना पड़ता है, तो वो उससे पूछते हैं।
4: आपको एक सुझाव देता हूँ कि एक हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 है, हरियाणा बना हुआ है ना, उसका अवेयर एक्ट है कि हिंदी में और इंग्लिश वर्जन में दोनों को लेके पढ़िए, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो उसके अंतर्गत ही सारा कुछ चलता है, आप उसको लेके पढ़िए, उससे आपको काफी मतलब सहायता मिल जाएगी गांव को चलाने के लिए। दूसरा ऐसे कि जो आप काम कर रहे हो, आप हरेक स्कीम का जो उसका एक रेसर आता है, मैनुअल आता है, आप उसको पढ़िए, कौन सी उसमें मतलब क्राइटेरिया है उस स्कीम का, कौन कौन से उसके बेनिफिशियरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितना आप इसको सीखते जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा आप अपने काम करेंगे अपने हिसाब से। एक दूसरा है जो आपका कार्ड है, जो ग्राम पंचायत, कितनी ग्राम पंचायत है आपके पास, कितने ग्राम पंचायत,
3: तीन
4: ग्राम पंचायत, कितने देर बाद विजिट करते हैं उनको, एक एक ग्राम
3: पंचायत सर बीते तो ही जाता है, तीन वीक में एक पंचायत में पैर रखते हैं, कम ब्लॉक में करना पड़ता है सर।
4: जाते हैं तो जो कार्ड है ग्राम पंचायत का उसको साथ ही साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पंचायतों में ज्यादा देर तक जाते नहीं है तो कार्ड इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें क्या है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल सारे लोग अवेयर है, जो भी काम होता है उसके बिल वाउचर उसकी प्रोसीडिंग रेजुलेशन सारा कुछ आपको ऑनलाइन, जैसे मेरी पंचायत है तो उसके बीच ऊपर अपलोड होता है, पंचायत निर्णय है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, अरे हमारे पंचायती राज के जो पोर्टल है ऑनलाइन उसके ऊपर भी आपको वो सारी चीजें अपलोड करनी चाहिए, क्यों कोई कहे से भी कोई मांग सकता है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अब टेक्निकली काम अपने हाथ से करते जाएंगे, आपको उतना आगे से आके आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। और घर से तो कोई नहीं आता, और हम डॉक्टर साहब से भी बोले थे, वो आप खुद भी कह रहे थे कि हम जो नए जो पंचायत सेक्रेटरी आए हैं, हमें पता है कि आप कई लोग तो ऐसी ऐसी नौकरियां छोड़ के आए हैं, तो आप लोगों के लिए हम जल्दी एक जो इंडक्शन कोर्स है वो जहाँ से आरटी में शुरू करेंगे, ताकि आपको अपने गांव का अवकाश कराने में कोई दिक्कत ना आए।
1: धन्यवाद।
4: तो दूसरा
1: धन्यवाद धन्यवाद गुरविंदर जी। सरपंच जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
7: जी सर।
1: आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपके गांव में क्या हर घर में नल से जल आता है?
7: बिल्कुल आता है सर, हर घर में जल जा रहा है, और बड़ी पाइपलाइन के साथ छोटे कनेक्शन हर घर में कराए गए।
1: और आपके गांव में क्या पानी का संरक्षण हो रहा है? कोई जो जोहड़ है या कुछ इस तरीके का कोई इंतजाम है जो आपके गांव में पानी का जो इंतजाम है, ताकि जो ग्राउंड लेवल है पानी का वो ज्यादा नीचे ना जाए, उसको रिचार्ज करते रहें?
7: बिल्कुल है सर, एक तालाब बनाया गया है जिसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, और वो उसमें से कोई निकालता नहीं है, पानी नीचे स्टोरेज होता है, धरती में जाता है पानी सर
1: जी।
7: अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तालाब को।
1: इस समय योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके ग्राम सचिव भी है, तो आप दोनों का समन्वय कितना रहता है, ताकि गाँव में अगर कोई कमी है उसको किस तरीके से किया जाए, और आप दोनों ने मिलके गांव में कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों को फायदा हुआ हो और लोगों को पसंद आया हो?
7: सर अभी तो समन्वय तो सर हम दोनों में पूरा 100% है, कोई भी ना ये मुझसे अलग कोई बात करते हैं और ना मैं इनसे अलग करता हूँ, जो भी बात होती है सबके सामने बात करते हैं
1: जी।
7: और बात अगर करें तो कोई ऐसा काम सर नहीं हो पाया जिस जो पूरे इलाके में अलग हो। एक सर मैंने एक वो बनाया था भी, हम अपने गांव में पंचायती भूमि में एक नंदीशाला बनवाएंगे, जो हमारा गोवंश आवारा घूमता रहता है उनको अच्छे से मेंटेन करें
1: जी।
7: माफी चाहूंगा सर, कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है
1: जी, इंटरनेट की कनेक्शन की समस्या है।
7: उसमें क्या, हाँ जी हाँ जी, वो सर उसमें क्या हुआ, वो अपने गांव की पंचायत ना दूसरे गांव की गांव वासियों ने कुछ केस किया हुआ है, उस वजह से नहीं बन पाया, नहीं तो अब तक के उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे होते, और जितने अपने आसपास के आवारा पशु थे सबको उसमें लेके आए हुए थे। अभी भी जो पीरियड बचा है, अगर उसमें डिसीजन कोर्ट की तरफ से आता है तो हमारे माननीय कोर्ट से कितनी जल्दी डिसीजन आएगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, जब भी आएगा सर उसको हम तुरंत बनाने का प्रयास करेंगे।
1: मैं जितेश जी से भी कहूंगा, वो भी आपसे प्रश्न करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कौन सा एक अच्छा काम आपने अपने गांव में किया है आज तक, और कौन सा अभी तक नहीं हो पाया जो आप हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपको सहयोग करे?
7: सर जो नहीं हो पाया वो तो एक छोटा सा काम है भी, मैंने अपने गांव में कम्युनिटी सेंटर बनवाना था
1: जी,
7: वो अभी तक तो नहीं हो पाया। दूसरा सर मैंने एक बात और रखी थी भी, जो गांव में ना किसानों की खेती खराब हो जाती है बरसाती पानी की वजह से, निकासी नहीं है प्रॉपर तरीके से खेतों की, तो उसकी निकासी के लिए मैंने सरकार को एक प्रपोजल भेजा था, और वो किसी कारण से बीच में रद्द हो गया, हमने दोबारा से उसको भेजा है नए तरीके से
1: जी।
7: अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो सर हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा, उनकी फसलें खराब नहीं होंगी
1: जी।
7: और सर गाँव वालों को तो फायदा ही होगा, आपको पता ही है, अगर फसलें हमें किसी और गांव में ना जाना पड़े
1: जी जी। मैंने जब आपको डिस्कनेक्ट हुए थे तब मैंने आपसे सवाल किया था, क्या आपके गांव में आपने अपना सचिवालय बनाया है कि नहीं बनाया?
7: नहीं सर, सचिवालय के लिए हमारे पास जगह नहीं है, अभी जो जगह है उसी का केस डाला हुआ है सर कोर्ट में।
1: अच्छा,
7: तो तकरीबन 7-8 एकड़ जगह है, टोटल एक ही कोर्ट में आती है, तो उसका इकट्ठा केस है
1: जी।
7: वोट के से इकट्ठा हुआ
1: जी। जितेंद्र जी
8: भारत जी
1: जी प्रीतम जी
8: भारत जी प्रीतम बोल रहे हैं
1: जी जी प्रीतम जी बताइए।
8: मेरा सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब से एक सवाल है
1: जी जी।
8: मेरा सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब से एक सवाल है
1: जी।
8: जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि मेरे को 1.5-2 साल हुआ युवा सेक्रेटरी है, इन्होंने गाँव को क्योंकि इन्होंने सोचा है जो आज के युवा सोच रहे हैं गाँव के विकास के लिए देश के विकास के बारे में कहते, तो सेक्रेटरी साहब ने कोई अकबरपुर युवाओं के लिए एक अच्छी सी युवाओं के लिए कोई प्रोजेक्ट सोचा है सेकेंडरी की
1: जी? दोनों से सवाल है सरपंच जी, आप बताइए फिर योगी जी बताएंगे।
7: सर मैंने एक वो उनके लिए प्ले ग्राउंड का निर्माण करने का प्लान बनाया था जो भूमि उपलब्ध होने पे ही कर पाएंगे सर हम, और अगर एक मैंने ई लाइब्रेरी के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ है ताकि जो युवा पढ़े लिखे हैं वो अच्छे से अपने एग्जाम वगैरह की तैयारी कर पाए, तो मैंने दो ही प्रपोजल बनाए थे युवाओं के लिए, और जो जैसे वो कोई भी खेल खेलते हैं उनके लिए सामान उपलब्ध कराया सर, मैंने हर साल उपलब्ध कराता हूं ताकि खेलते रहें
1: जी। योगेश जी आप क्या बताते हैं?
8: भूमि उपलब्ध करवाना आपका काम है आप।
1: प्रीतम जी पहले योगी जी से आप अपने सवाल का जवाब लेते हैं फिर आप दूसरा क्वेश्चन कीजिए जी। योगी जी
5: सर अभी इसमें जैसे अभी अकबरपुर गांव में युवाओं के लिए ओपन जिम में जाकर प्रैक्टिस कर सके, लाभ अपना हासिल कर सके, ओपन जिम का निर्माण भी करवाया गया है अकबरपुर गांव में
7: जी।
5: हाँ जी, और सर इसमें अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ई लाइब्रेरी के लिए प्रपोजल दिया है सर, वो जैसे ही कंप्लीट होगा हम उसके निर्माण करवा देंगे जल्द से जल्द। छोटी पंचायत है सर, तो पंचायत की जमीन का भी थोड़ा बहुत जगह कम है अभी, तो जो सरकारी बिल्डिंग बनाने में थोड़ी बाधा आती है सर।
1: वैसे माना जाए तो कोई भी काम हमें करना है कि मुश्किलों से ही हमें रास्ता बनाना पड़ता है। प्रीतम जी आपको सवाल का जवाब मिल गया जी? जितेश जी
0: सर बीच में मैं आप सभी को थोड़ा रोकना चाहूंगा।
8: मेरे को मिल गया सर, मेरा एक सवाल और था छोटा सा, जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं इनके सचिवालय नहीं है
1: जी।
8: हाँ जितेश जी
0: कोई नहीं सर, आप अपना सवाल पूरा करें पहले फिर मैं अपना करता हूँ
1: जी। प्रीतम जी बोलिए।
0: सर शायद नेटवर्क इशू है सर,
8: मैं सरपंच साहब से पूछना चाहता था जो इनके गांव में सीएससी सेंटर खुले हैं कभी उनके ऊपर जाकर।
1: प्रीतम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं जितेश जी को कहूंगा,
8: आपकी आवाज आ रही है,
1: मैं जितेश जी को कहूंगा वो कहें क्या पूछना चाहते हैं।
0: सर मैं प्रीतम सर का ही क्वेश्चन आगे बढ़ा देता हूँ। प्रीतम जी पूछना चाह रहे हैं कि आपके गांव में जो सीएससी सेंटर चले हुए हैं कभी आपने जाकर उनका निरीक्षण किया है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं गलत से काम कर रहे हैं, फैमिली आईडी में इनकम का क्या चल रहा है, मतलब ढेर सारी बातें हैं, तो कभी आपने जाके सीएससी सेंटर पे देखा है कि आपके ग्राम पंचायत के जो सीएससी सेंटर है वो सही काम कर रहे हैं? सही काम इन द सेंस ऐसे होता है सर जैसे पीछे हमारी फैमिली आईडीज बनी है
1: जी।
0: तो फैमिली आईडीज की जो 50 रुपए फी होती है वो सरकार उनको देती है, लेकिन वो 50 रुपए हमारे से भी चार्जेस कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीजों का पता है कि ये सीएससी सेंटर इस वे में काम कर रहे हैं?
7: यस सर बिल्कुल पता है सर, और सर अगर बात करें मेरे गांव में एक ही सीएससी सेंटर है
0: जी
7: जो अच्छे से काम कर रहा है, और मैं नहीं मानता उन्होंने आज तक मेरे को कोई शिकायत मिली हो भी उन्होंने किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे लिए हों
0: जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आपकी ग्राम पंचायत और आपके सीएससी सेंटर को। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सर, पीछे जैसे हमारी बात चल रही है कि हमारी जो पंचायती जमीन है उस पर केस चला हुआ है, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कितनी पंचायती जमीन है आपके ग्राम पंचायत के पास?
7: सर पंचायत की जमीन की अगर बात करें तो लगभग 20 एकड़ के आसपास है, जिसमें से 10-10.5 एकड़ कृषि विज्ञान केंद्र को पट्टी पर दी हुई है पिछली पंचायतों ने।
0: जी सर, और 9:30 तो जमीन है उस पर हमारा केस चला हुआ है। तो सर उस केस का क्या स्टेटस है, मतलब वो केस पंचायत वर्सेस सरकार है या फिर पंचायत वर्सेस ग्रामीण है?
7: पंचायत वर्सेस अदर ग्रामीण है सर।
1: अच्छा, आपके गांव? जी
7: हाँ, मेरे गांव का कोई व्यक्ति नहीं है जिसने केस किया हो, वो दूसरे गांव के लोग हैं जिन्होंने केस किया हुआ है पंचायत के ऊपर।
0: तो सर उन्होंने किस मतलब किस रीजन से उस पर केस किया हुआ है?
1: जब वो आपके गांव के है ही नहीं तो
7: वो क्या है सर? वो मैं बताता हूँ सर, जैसे उन लोगों की जमीन हमारे गांव में लगती है, हमारे गांव के रकबे में उनकी जमीन लगती है, उसी को आधार मान के उन्होंने केस किया हुआ है। वो कहते हैं भी ये जो जमीन है हमारे हिस्से की कटी हुई है पंचायत में, तो ये इसी वजह से उन्होंने केस रखा हुआ है।
0: चलो सर, हम आगे कभी जुड़ेंगे अकबरपुर ग्राम पंचायत के साथ, तो हम यही सोचकर जुड़ेंगे कि शासन और प्रशासन के साथ मिलकर आप अपनी जो पंचायती जमीन है इसे क्लियर कराएं, अपने युवाओं के लिए ई लाइब्रेरी आप खोलें, ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिवालय आप खोलें, और कम्युनिटी सेंटर की जो मांग होती है गांवों में उसको लेकर आप आगे भविष्य में काम करें। सर एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है, कितना महिलाएं हैं और कितना पुरुष हैं, और फिर हम शिक्षा की बात आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा की बात की महिलाएं सॉरी हमारी जो बेटियां हैं बच्चियां हैं या लड़की हैं ग्राम में स्कूल शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर किस टाइप का है, मतलब हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे पास मिडिल स्कूल है, फिर हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, और कितनी हमारी जो बेटियां हैं बच्चियां हैं वो स्कूल जा रही हैं, और कितनी ऐसी हैं जो अपने घर पर रहकर मतलब शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, और ऐसी लड़कियों को ऐसी बेटियों को लेकर हमारे ग्राम पंचायत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। थोड़ा मेरा सवाल लंबा हो गया, आप कहो तो मैं उसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। शिक्षा की हम बात करेंगे सर कि शिक्षा मतलब हमारे जो गाँव में मिडिल प्राइमरी या फिर सीनियर सेकेंडरी जो सरकारी स्कूल है वो कैसा है, कैसा उसका रिजल्ट है, और हमारे गांव का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है?
7: सर स्कूल की अगर बात करें तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है जो संस्कृति मॉडल प्राइमरी स्कूल है, और बाहर सर ने तो देखा है इन्होंने स्कूल कैसे मेंटेन किया हुआ है, अच्छे से साफ सुथरा स्कूल है
1: जी।
7: और अगर उसमें बच्चों की बात करें तो लगभग 25 या 30 बच्चे होंगे जो प्राइमरी सेक्शन के हैं। और अगर बात करें सर बाहर मतलब लड़कियों की बात करें, मेरे गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो पढ़ी लिखी ना हो।
0: जी सर
7: ठीक है सर, कोई भी लड़की मैं कहता हूँ अंडर ग्रेजुएशन कोई भी नहीं होगी, सब ग्रेजुएशन के लगभग हैं। जो छोटी लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई रूटीन में कर रही हैं
0: जी,
7: तो किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है सर, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो बड़ा स्कूल है संभाल का पड़ता है अपने पास में ही, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लड़कियां वहां जाती हैं, सभी को साइकिल मेंटेन किए हुए हैं, सभी ने साइकिल से चली जाती हैं, और ज्यादा दूर नहीं है सर, मतलब 1 किलोमीटर का दायरा है
1: जी। जीतेश जी
7: दूसरा गांव जो है 1 किलोमीटर के दायरे में।
0: जीतेश जी चलो सर ये तो अच्छी बात है कि नजदीक है सारी चीजें, 1 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन फिर भी आप अपने अपने जो स्कूल अपने गांव का जो स्कूल है प्राइमरी जो स्कूल है आप उसके लिए आवाज उठाइए, ग्राम सचिव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप अपने गांव के स्कूल को भी जल्दी से जल्दी अपडेट करें, अपडेट करवाएं। ग्राम सचिव जी भारत जी मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
1: जी जी हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, ग्राम सचिव योगेश जी से हम सवाल का जवाब ले लेंगे, बट कुछ कमेंट्स आए हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हमारे साथ आजाद मान राम राम जी कहते हैं, कुलदीप लांबा कहते हैं राम राम हरियाणा, सर्जन सिंह कहते हैं राम राम हरियाणा, और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी कह रहे हैं राम राम जी, मुझे पता है कि वो इस समय मीटिंग में है इस वजह से नहीं जुड़ पाए। सुनील शर्मा राम राम हरियाणा कहते हैं, करमबीर सिंह राम राम हरियाणा कहते हैं, और करमबीर सिंह एक बार फिर राम राम हरियाणा कहते हैं। मैं योगेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको अपग्रेड करके मिडिल या हाई स्कूल किया जाए, आप लोग क्या इस विषय में काम करते हैं ताकि जो हमारी बेटियां हैं वो उनको दूर न जाना पड़े, उनको कम से कम मैट्रिक तक जो शिक्षा है वो गांव में मिले। जी योगेश जी
9: सर पहले तो जैसे कि जो जनसंख्या है गांव की वो कम है अपनी जैसे।
1: अच्छा
5: तो जनसंख्या के हिसाब से तो जैसे सरकार को रखना होता है कि स्कूल के लिए इतने मिनिमम बच्चे चाहिए होते हैं।
1: ठीक है,
5: तो इस वजह से पासकुवा में जैसे बताया आपको पहले कि पासकुवा में स्कूल है
1: जी,
5: तो बच्चे वहाँ से रीच आउट हो जाते हैं, गाँव के बच्चे कम हो जाते हैं सर जैसे उसमें ना।
1: ठीक है,
5: जो स्कूल है तो उसमें गाँव के बच्चों की संख्या कम रह जाती है, इस वजह से सर उसमें फिर आगे बढ़ाने का उसमें मतलब प्रोसेस रह जाती है।
1: जी धन्यवाद इस रिप्लाई के लिए। सरपंच जी, क्या आपके गांव में कोई प्राइमरी प्राइवेट स्कूल भी है?
7: मेरे गांव में नहीं है सर, लेकिन पास के गांव में है, और जैसे अपना मिठापुर पड़ता है ना, 3 किलोमीटर है
1: जी, जी,
7: तो वहां पे है 2-3 स्कूल वहां पे बने हुए हैं प्राइवेट स्कूल, बच्चे बहुत सारे जाते हैं, नहीं तो कैंट भी जाते हैं सर, अम्बाला कैंट में है, डीएवी पब्लिक स्कूल है रिवर साइड, उसमें जाते हैं, एलटी पब्लिक स्कूल है सर उसमें जाते हैं। तो आपने देखा है अभी आजकल हमारा कल्चर ऐसा हो गया है प्राइवेट स्कूलों का चलन ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा अगर आप मानते हैं भी थोड़ा सा बंदा आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो वो अपने बच्चों को ये सोचता है भी प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, जबकि हम सब सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले हैं सर, मैं मानता हूँ कि हम सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो सकती, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है सर।
1: क्या सरपंच जी आपने कोई अपनी तरफ से कोशिश की किसी को ये बताने के लिए कि जब गांव में हमारे पास प्राइमरी स्कूल है कम से कम प्राइमरी शिक्षा? एक मिनट, हमारे पास कॉल आ रहा है, हम पहले हम कॉल लेते हैं पहले। हेलो
9: जी सर।
1: हाँ जी हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
10: हैं?
1: जी जी बताइए राजवीर जी, क्या कहना चाहते हैं?
10: मैं ऐसे करता हूँ जी, मेरे हैंडीकैप का वो बन रहा था 3 साल का जी, हैंडीकैप मेरिट गड्डी का प्रश्न था, वो हैंडीकैप बनाया 3 साल का जी।
1: अच्छा जी,
10: वो रिक्शा का रखा जो जी 7वां महीना में मेरे 3 साल हो जाएंगे ये।
1: अच्छा जी, आप एक बार अपने गांव का नाम बताएं प्लीज।
10: गांव पेंट अस्कला जी।
1: कहाँ और कौन सा जिला कौन सा है?
10: दादरी।
1: अच्छा, आपने पहले भी कॉल किया था एक बार, हमारे साथ सीएमओ साहब थे, हमारे पास चारखी दादरी के सीएमओ साहब थे इस शो में, उन्होंने बताया था कि वो हमारे पास आएंगे तो वो हम उनको सहायता करेंगे। प्रीतम जी अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया आप बताएं क्या कहा था उन्होंने। प्रीतम जी आप जुड़े हैं हमारे साथ?
11: सर रेड क्रॉस में जाके इन्होंने भेजा था विजय, मैंने इनके नंबर नहीं मिले, मैं जुड़ा हूँ सर।
1: जी बताइए, आप राजवीर जी को बताइए क्या हमने बात की थी उस दिन।
11: राजवीर जी आपने रेड क्रॉस के अंदर जाना है, वहाँ पे विजय मिलेंगे, क्योंकि हमने रेड क्रॉस से जुड़े थे विजय जी,
1: जी,
11: और उनको पास जाके जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और आपको साइकिल मिल जाएगी।
10: उनके पास गया था जी, जो कम प्लग लगाना है जी, दुमावा जी हमारे पास रिक्शा नहीं है, मेरी 7वां महीना में 3 साल का
11: आप एक बार
10: उनके पास 4 बार जमा करवाया था, कितने तो 4 बार
11: एक बार राजवीर जी जब प्रोग्राम में विजय जी जुड़े उसके बाद आप नहीं गए उनके पास, मैंने काफी बार रेडियो के ऊपर भी बोला था, तो आप एक बार राजवीर विजय जी से बात करवा दीजिए। राजवीर
1: राजवीर जी मेरी बात आप सुनिए, आपकी जो बात हमारे तक पहले भी पहुंची थी, आप शो के बाद अभी प्रीतम जी वो बाहर है, आप प्रीतम जी से एक बार बात कर दीजिए या आप प्रीतम जी के स्टूडियो में जाइए, वहां से वो विजय जी से बात करेंगे तो सारा जो मसला है वो वहां पर पता चलेगा कि आपकी तरफ से कमी है या उनकी तरफ से कोई कमी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, और ये कार्यक्रम है ही इसीलिए ताकि अगर आपकी कोई समस्या उसका समाधान हो सके।
10: वो जी 70% के कारण कि मैं 4-5 रुपया संदर्भ कौन खा लिया जी वे।
1: राजवीर जी जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियम के अनुसार ही वो कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर मैं उनको कहूंगा कि वो कर पाएंगे तो नियम जो होंगे नियमों का पालन करने के बाद ही वो कर पाएंगे।
10: जी
1: जी
3: आपसे बात करवा के आपका समाधान करवाएंगे, जिला उपायुक्त से करवाए
10: ठीक है
1: जी।
3: ये मैंने डीसी साहब के भी उसमें डाल दिया था नॉलेज में
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बीच में आप हमारे साथ आवाज के माध्यम से जुड़े हैं। प्रीतम जी के बाद मैं बात करना चाहूंगा सरपंच जी से। रामनिवास जी, मैं आपके जब गांव आया था तो आपके जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है मैंने उनसे बात की थी, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मुझे दिल को बहुत तसल्ली हुई थी जब मैंने उनसे ये पूछा था कि जब आप ग्रामवासियों के लिए अलग अलग समय पर पानी छोड़ देते हैं नलके के माध्यम से तो आपको कैसा लगता है। तो दिल से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पानी पिलाना धर्म है और इससे बड़ा कार्य मैं जिंदगी में नहीं कर सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप खुशनसीब है, आपको ऐसे लोग गांव में मिले हैं। तो कितना मुश्किल और कितना आसान है गांव का सरपंच बनना?
7: सर मेरे अनुसार तो बड़ा आसान लगा मुझे तो, मुझे तो कोई जोर ही नहीं लगा सर मेरा तो, भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नहीं तो लोग सर आप, मैंने बताया था आपको भाई लोग 5-5 साल तैयारी करने में लगाते हैं सरपंची के लिए। और सर जैसे अगर बात करें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, स्वीपर हो गया गांव का, चौकीदार हो गया, नंबरदार हो गया, और इवन बात करें तो जितने भी पुराने सरपंच हैं एक दो को छोड़ के सभी का सपोर्ट बहुत बढ़िया है सर। और सबने अच्छे से बातें करते हैं, जो भी काम होता है सब अच्छे से बताते हैं भी ये काम ऐसे करना है, ऐसे हो सकता है, ये करो वो करो, वो सब हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर किसी भी प्रकार की।
1: सरपंच जी आप अच्छे सरपंच तब माने जाएंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको भी तैयार करेंगे, मनाएंगे और उनको बताएंगे कि मैं गांव के लिए काम कर रहा हूं और वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। जितेश जी ऐसी सिचुएशन में एक सरपंच अगर गांव की तरक्की के लिए काम करना चाहता है तो क्या ऐसे अड़चने आती हैं जिस वजह से गांव का जो उत्थान है वो रुक जाता है?
9: बिल्कुल सर, ऐसी अक्सर अड़चने आती हैं, लेकिन सरपंच साहब, सारे ही सरपंच साहब, हमारी हरियाणा प्रदेश के सारे ही सरपंच साहब अपनी शिद्दत मेहनत और लोगों, सर है क्या कि गांव के जो लोग है ना, अगर हम उनको अपने विश्वास में ले लेंगे ना तो फिर आप समझो कि हमारे सामने कोई मुश्किल और परेशानी आ ही नहीं सकती। ये पक्ष और विपक्ष तो सर हमारे देश में भी है, प्रदेश में भी है और छोटी पंचायतों में भी है, लेकिन जिसका काम करने का विजन अच्छा है, गांव के लोग उसके विश्वास में है और गांव के लोग अगर उनके कामों की सराहना कर रहे हैं तो सर ग्राम पंचायतों में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल है।
1: एक कॉल,
9: कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े
1: हैं। जी जी जी, हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी
12: मेरा नाम रणदीप सिंह है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूं।
1: जी रणदीप जी,
12: यह है
1: जी बताइए
12: सर, भी एक कमेंट भी तो सरपंच साहब हैं हमारे लाइव निवास जी,
1: जी जी
12: उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बताया है, जो कि खेतों में जो पानी है जो जमा हो जाता है
1: जी,
12: ये समस्या आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारे विलेजेस में ये दिक्कत आ रही है
1: जी सर।
12: तो मेरा आपके रेडियो के माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तक ये बात जाए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा अन्नदाता अगर वो उसे अपनी फसल का जो कहते हैं ना, अगर उसकी फसल पे नुकसान होता है, खेत में पानी जमा रहता है तो अल्टीमेटली पूरी स्टेट को अफेक्ट करता है, हम सबको अफेक्ट करता है
1: जी।
12: तो मेरा ये आपसे निवेदन कि इसकी और जरूर कुछ ना कुछ की कार्रवाई।
1: रणदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया है, आपका जो पॉइंट है हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर दिन जुड़े होते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जो कि निदेशक है हरियाणा ग्रामीण संस्थान के, आपका पॉइंट हमने नोट कर दिया। आप इस कार्यक्रम को सोमवार से शुक्रवार तक 4-5 बजे जरूर सुनिएगा, हम आपके इस सवाल का जवाब उन तक सवाल पहुंचाएंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे और वो इस दिशा में सरकार को क्या डिटेल्स दे सकते हैं, किस तरीके से वो निवेदन कर सकते हैं सरकार को। रणदीप जी आपने ये जो सवाल किया और कॉल किया हमें, इससे और बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें बहुत खुशी है और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। जितेश जी आपसे बात करना चाहता
9: हूँ। सर आप प्रॉपर गुड़गांव से यानी गुरुग्राम से बात कर रहे हैं या फिर आप किसी गांव से हमारे साथ जुड़े हैं?
12: देखिए मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का रहने वाला हूँ, मतलब हम लोग शुरू से गुड़गांव में रहे हैं
1: जी जी,
12: और मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत खेती वगैरह की नॉलेज है और वीरेंद्र जी से कहीं ना कहीं मैं टच में हूँ, तो मुझे ये आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इसमें एटलीस्ट हमारे जैसे लोग और आप सरपंचों से इतनी क्लोजली जो बात करते हैं और जो हम जैसे लोग सुन पाते हैं, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
12: रेडियो के ऑनलाइन मीडिया के थ्रू जैसे मैं गुरविंदर जी हैं, इनके सजेशन जो होते हैं, इनके जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये टीम को ब्रीफ करते हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबल है किसी नए सरपंच के लिए या हम जैसे लोगों के लिए। ये बड़ा ही मीनिंगफुल है कि हमें पता लग पा रहा है।
0: बिल्कुल सर, आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सलाह सुझाव हमारे साथ साझा करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हम भी आगे राम राम हरियाणा में अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके।
1: रिंदर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और साथ में रामनिवास जी को भी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। और अगर हम कोई भी सरकार से डिमांड करते हैं, हम प्रयत्न करेंगे तो वो डिमांड हमारी पूरी हो जाती है। सवाल ये है कि हमें अपनी जरूरत को सामने रखना होगा। रिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
12: थैंक यू
1: सर। रामनिवास जी, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने किसान भाइयों का जो पॉइंट उठाया, तो हम कोशिश करेंगे वीरेंद्र सिंह जी से ये डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी मीटिंग भी एक होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि इसका कुछ भी समाधान हो। मैं गुरविंदर जी से पूछूंगा, क्या इस तरीके का कोई समाधान हो सकता है? गुरविंदर जी,
4: इस चीज के लिए हमें आगे जो इस चीज के लिए जो हमें डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा
1: जी जी,
4: उनके किसी मेहमान को जो को हम बुलाएंगे प्रोग्राम में
1: जी,
4: तो ये लग एक है उसके बारे में भी सही बता सकते हैं। दूसरा, मैं आज के प्रोग्राम में जो हमारे जो जिग्नेश जी है और रामवास है, इससे मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूँ
1: जी, प्लीज।
4: 5 मिनट का समय बाकी है। पंचायती राज मंत्रालय है, अभी सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे कर रहा है कि जो हमारी ग्राम सभा है, जिसको हम मिनी सांसद बोलते हैं, हमारी पार्लियामेंट है, तो उसमें लोगों की काम भागीदारी क्यों हो रही है? एक तो मुझे इस चीज का आप जवाब दीजिए। दूसरा, एक जो पंचायत के लेवल पे आप सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें कौन सी मुश्किलें आ रही है और उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, कैसे हम गांव वासियों को अच्छी से सेवा कर सकते हैं और कौन सी सुविधाएं हैं जो ग्राम पंचायत के लेवल पे जरूरी है, ये दोनों चीजों को आप जगेश जी मुझे बताएं
1: जी।
4: पहले तो पंचायतों में ग्राम काम भागीदारी क्यों हो रही है और सार्वजनिक डिलीवरी में क्या दिक्कतें आ रही है?
5: ग्राम पंचायत में जो कम भागीदारी वाली बात है जो उसमें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जैसे हम ग्राम सभा आयोजन करते हैं तो मैं ये होता है कि वर्किंग डेज में ही कर सकते हैं, वर्किंग डेज में ज्यादा, क्योंकि उसमें कंडीशन है ना कि छुट्टी वाले दिन हम नहीं कर पाते, वो फिर या तो सरकार की स्पेशल कोई सभा आती है कि इस दिन आपने करनी है तो उसमें हम करते हैं। ये तो मेरी जो सभा करते हैं उसमें वर्किंग डेज में होती है और जो मैन पावर है वो उसके अलग रहती है, तो उसमें भागीदारी वो कम रह
1: जाती
5: है। फिर भी गाँव में जितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग अच्छी सुबह हो रही है सर हमारे गाँव में, देखो सर चौकीदार के माध्यम से बता दिया जाता है सभाओं के बारे में कि वैसे वैसे करके इस एजेंडा के थ्रू सुबह होगी, माइक के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस दिन सभा हो रही है।
4: जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैंने सभी पंचायतों को विजिट किया हुआ है, अभी 3 जिलों को सभी पंचायतों ने ली थी, तो उनमें काफी में ये सवाल आता है कि लोगों को उसकी सूचना नहीं दी जाती, मतलब जिस दिन ग्राम सभा होती है उसी दिन बोला जाता है, हालांकि उसके लिए मतलब 15 दिन का टाइम होता है, कम से कम हफ्ता पहले तो आप मतलब बताना ही होता है ना गाँव वासियों को कौन सा एजेंडा है, कहाँ पे ग्राम सभा होनी है, किस समय पहुंचना है, इस तरह की जानकारी का आप भी लोग उतारे हैं। दूसरा जो उतारे हैं कि जो निर्णय होते हैं उसमें मतलब पारदर्शिता नहीं होती है और जहाँ कई जैसे गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, जहाँ महिलाओं को जो आपके महिला मेंबर होते हैं वो खुद नहीं आते, उनके जो पति हैं, उनके भाई हैं, जहाँ उनके और रिश्तेदार है वो आके बैठ जाते हैं, उसकी वजह से महिलाओं की जो संख्या वो कम हो जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं?
5: सर अभी जैसे भाई जो पंचायत अकबरपुर इसमें तो सर पूरा मतलब वर्किंग में है, अच्छे से चल रहा है, इसमें भागीदारी जो पंच है सर महिला पंच है वो आती है सर।
1: जो महिलाएं अपना मतलब योगदान देती हैं, जो महिलाएं कहती हैं, क्या उसको मान्य किया जाता है? क्या महिलाओं से मशवरा किया जाता है? जो वो भी सुझाव देती हैं, क्या उन सुझावों को आप सीरियसली लेते हैं रामनिवास जी?
7: बिल्कुल सर, बिल्कुल सीरियस लेते हैं और हर जो भी वो बात करती हैं उनकी बात को मान्य किया जाता है सर, और कोई किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया सर आज तक। मतलब 4 साल का जो ये पीरियड गया है, इसमें किसी भी लेडीज की किसी बात का विरोध नहीं किया गया सर
1: जी। गुरविंदर जी।

0: बाहर चले जाते हैं सर, और जो टाइम होता है वो 9 बजे से 5 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में रखनी होती है, उस टाइम तक जेंट्स तो उपलब्ध ही नहीं हो पाते, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो सब प्रेजेंट हो जाते हैं सर।
1: चलिए, इस कार्यक्रम का समय तो अब समाप्त हो गया है, और मैं रामनिवास जी आपको ये कहूंगा कि आप अंबाला की जनता को अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में क्या कहना चाहेंगे?
0: सर मैं तो इतना ही कहूंगा, सभी मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और एकता बनाए रखें, किसी भी तरह का कोई भी विरोध या ना करें, और सरकार जो कहती है उसे मान्य करें सर।
1: चलिए, मैं आपको आमंत्रण देता हूं हमारे स्टूडियो में, आप और योगेश जी दोनों आए यहां स्टूडियो में, यहां हम बात करेंगे गांव के बारे में, गांव को आगे और बढ़ाते हैं इस रेडियो की आवाज के माध्यम से। और गुरविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें, आप सूत्रधार हैं हमारे मेहमानों के लिए और आप उनको जोड़ते हैं इस शो में, और आपका बहुत बड़ा योगदान है, और आप बेशक सुनते रहते हैं हमें, और ज्यादा तो मैं ही बोलता हूं पर आप सुनते रहते हैं, तो इसके ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। जितेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने सार्थक सवाल किए। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रामनिवास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से राम राम हरियाणा।
2: राम राम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ सरगम का एक और अंक। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सिलसिला के गाने से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और म्यूजिक से सजाया है शिव हरी ने।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

अब आपकी नजर है राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारी।

लीजिए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नायर का संगीतबद्ध गीत, जिसके बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली पेशकश है बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और जिसके बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और फिल्म का नाम है चलते चलते।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म फागुन से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसको म्यूजिक से सजाया है ओपी नायर ने और उसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब आपके नजर है ये एक और नगमा, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अजनबी और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और अपने म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही आज का सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल ललियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा
1: गीत।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश मराठा।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तसव्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते

जिंदगी एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

बातें झूठी हैं, ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदसा के प्रसारण और हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से और ये सामुदायिक रेडियो स्वीकृत हुआ है अम्बाला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और हम कोशिश करते हैं कि हम वो बात करें जो आपसे रखती हो सरोकार। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:04। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। समय की सुइयां गवाही दे रही है कि अब हमारी और आपकी इस खूबसूरत मुलाकात को यहीं थामने का वक्त आ गया है। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के आज के इस सुरीले सफर को हम यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आज दिल की कुछ गहरी बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। रोज की तरह आज हमने टॉपिक जो लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी के लिए मार्गदर्शक है और टॉपिक है आज का गुरु की महिमा। गुरु बिन ज्ञान नहीं। श्रोताओं, हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। सच ही कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। एक इंसान की जिंदगी में गुरु का होना और गुरु की अहमियत ठीक वैसी ही है जैसे घने अंधेरे में जलता हुआ एक दिया, यानी मार्गदर्शक। गुरु सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। तराशने वाले एक अच्छा गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी के कच्चे घड़े को बाहर से तो थपकियां देता है लेकिन अंदर से सहारा देकर उससे एक खूबसूरत आकार देता है। हमारी काबिलियत को पहचान

हाँ, एक टीस जरूर रहती है। दुख इस बात का नहीं होता है कि शिष्य चला गया, दुख इस बात का होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। गुरु निस्वार्थ होता है, उसका काम सिर्फ रोशनी दिखाना है। चलना या ना चलना शिष्य का चुनाव होता है। क्या जाने वाले को पछतावा होता है? बिल्कुल होता है। जब कोई इंसान एक सच्चे काबिल और निस्वार्थ गुरु का हाथ छोड़कर अपनी धुन में आगे निकल जाता है, तो शुरुआत में भले ही उसे अपनी आजादी अच्छी लगे, लेकिन जैसे ही जिंदगी की राह में मुश्किलें आती हैं, जब ठोकर लगती है और जब वो खुद को भटका हुआ महसूस करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। एक अच्छे गुरु को छोड़ देना और का पछतावा इंसान को उम्र भर रहता है, क्योंकि काबिल गुरु बार बार नहीं मिलते। तो ये था आज का टॉपिक। तो चलिए श्रोताओं को आज के इस सफर को समेटने के बाद और साथ ही एक शायरी के साथ इसका समापन करते हैं, जिसमें हमारी वितस्ता की लहरों का सुकून भी है और जीवन का फलसफा भी। लहरें बनकर जो बहती रही वो पावन प्रीत वितस्ता है। लहरें बनकर जो बहती रही वो पावन प्रीत वितस्ता है। गुरु की उंगली थामे जो चले वही सीधा सच्चा रास्ता है। गुरु की उंगली थामे जो चले वही सीधा सच्चा रास्ता है। छोड़कर जो जाए बीच राह में वो उम्र भर पछताएगा। छोड़कर जो जाएगा बीच राह में वो उम्र भर पछताएगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिली जिनका गुरु से वास्ता है। मंजिल उन्हीं को मिली जिनका गुरु से वास्ता है। आज मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं इस समय अपने गुरुओं का सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं। अगर मैं थिएटर की बात करूं तो मेरे गुरु जी हैं स्वर्गीय मोतीलाल केमू जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। थिएटर में जो भी कुछ किया वो श्रेय सारा उनको जाता है। और जहां तक तो आवाज की दुनिया का सवाल है, वहां मेरे गुरु जी हैं आदरणीय रमेश मराठा जी। रमेश मराठा जी ने हर पल हर दम और आज भी हमें हर मोड़ पर वो सिखाते हैं। अगर उनका हाथ सिर पर ना होता तो शायद आज मैं आपसे ये रूबरू ये लाइव बात ना कर पा रहा होता। तो आप सभी को मैं एक अनुरोध करता हूं, आप अपने गुरुजन का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें और आगे बढ़े जिंदगी में। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रम का विवरण देते हैं। कल 26 मई 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत 5:58 पर होगी वंदे मातरम से, और 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम घर परिवार, 8:30 सकारात्मक कहानियां एपिसोड 4 ममता माँ की पेश करेंगे नरेश शर्मा, 9:30 रेट्रो हिट्स एपिसोड 14 बाबुल पेश करेंगे आरजे किरनी, 10:15 कार्यक्रम होगा युवा ही देश का भविष्य, हमारे साथ होंगी श्रुति सयाल पेश करेंगे भारत सोपोरी और जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 3 पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है रात की चुप्पी। उम्मीद करते हैं कल के कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे, अपना फीडबैक हमें भेजेंगे, और उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, हमें अपनी जानकारी भी भेजते हैं। आप भी भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो इन्हीं खास अल्फाज के साथ अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, आपसे होगी मुलाकात इसी मोड पर इसी तरंग पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।